फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, फौलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जॉनी मेरा नाम से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की प्रथम तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, इस समय प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मातृवंदना।

मातृभूमि के चरणों में नमन करने के पश्चात आइए नमन उस परम परमात्मा को जिसने ये हमें अनमोल जीवन दिया। सुनवा रहे हैं आपको कुमार विशु के स्वर में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति गीत, स्वर दिया था कुमार विशु ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अनुराधा पुरवाल के स्वर में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर के आवाज़ में ये भक्ति गीत।

दिन जाए दिन आए। लता मंगेशकर के आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ये अगला भक्ति गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन के स्वर में ये भक्ति गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। और अब समय है श्रोताओं कार्यक्रम चिंतन का। आज का चिंतन केंद्रित है परिवार की महत्वता। चिंतक हैं डॉक्टर JB सिंह।
1: जापान के एक पूर्व सम्राट यमातो के मंत्री ओचोशान पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि उनके परिवार में 100 से भी अधिक सदस्य थे, किंतु वे सभी एक साथ पूर्ण सौहार्द से रहते थे। उनमें कभी भी किसी बात को लेकर खटपट नहीं होती थी। ये बात सम्राट के कानों तक पहुँची। सम्राट को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सम्राट बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात मंत्री के घर पहुंच गए। स्वागत सत्कार स्वीकार करने के उपरांत सम्राट ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि इतने अधिक सदस्यों वाले आपके परिवार में शांति और सौहार्द का रहस्य क्या है? मंत्री ने अपने पौत्र से एक कागज और कलम मंगाया और कागज पर कुछ लिखकर सम्राट को देते हुए कहा, महाराज, इस कागज पर मैंने अपने परिवार की शांति और सौहार्द का मूल मंत्र लिख दिया है। सम्राट कागज पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ। कागज में एक ही शब्द 3 बार लिखा था, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। मंत्री द्वारा लिखा गया यह मंत्र न केवल मंत्री के परिवार के लिए अपितु संपूर्ण विश्व परिवार के लिए एक सार्वकालिक और सार्वदेशिक महामंत्र है। आज जबकि संयुक्त परिवार की अवधारणा लगभग बीते दिनों की बात हो गई है, एकल परिवार समय का यथार्थ बन गया है, परिवार का अर्थ ही बदल गया है। भाई भतीजी के कौन कहे, वृद्ध माता पिता को भी कोई साथ नहीं रखना चाहता, तब हमें परिवार की उपादेयता और परिवार मूल्यों की प्रासंगिकता पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार समाज की एक अनिवार्य इकाई है। मानव संस्कृति का समारंभ और विकास पारिवारिक या कौटुंबिक जीवन से ही हुआ है और आज भी वो हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। परिवार छोटा हो या बड़ा, किंतु परिवार के बिना हम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। वह परिवार ही होता है जहां संस्कारों व परंपराओं की शिक्षा मिलती है। वह परिवार ही है जो हमें जीने का ढंग सिखाता है, तनाव के पलों को खुशियों में बदल देता है और कठिनाई के क्षणों में सहारा देता है। परिवार भले ही आर्थिक दृष्टि से समृद्ध न हो, फिर भी अपनों के प्यार भरे दो शब्द व्यक्ति के बुझे हुए चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं। प्रश्न है कि परिवार रूपी इतनी महत्वपूर्ण और उपादेय संस्था में आज इतना बिखराव क्यों आ गया है? वो कौन से मूल्य और सिद्धांत हैं जिनके खो जाने से आज परिवार बिखरते जा रहे हैं? यदि हम अतीत पर दृष्टि डालें तो कुटुंब की प्राचीनतम अवधारणा हमें वैदिक साहित्य में मिलती है, जहां 3-3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। कौटुंबिक सौहार्द के लिए वे कितने प्रयत्नशील थे, ये बात हमें वेद के मंत्रों से ज्ञात होती है। वे कहते हैं, जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। पुत्र माता पिता के प्रति, भाई भाई के प्रति, बहन बहन के प्रति और पति पत्नी के प्रति मधुर, निष्कपट और प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। पारिवारिक जीवन में सौमनस्य बनाए रखने के लिए पारस्परिक व्यवहार के मानदंड भी स्थापित किए गए थे। यदि पुत्र के लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का उपदेश था, तो पिता के लिए भी निर्देश था कि पुत्रम मित्रवदाचरेत, अर्थात 16 वर्ष के पुत्र के साथ पिता मित्रवत व्यवहार करें। ये आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक है। जिस परिवार में लोग पारिवारिक अनुशासन मानते हैं, जहां बड़ों को उचित सम्मान और छोटों को स्नेह मिलता है, जहां त्याग, सेवा और सहिष्णुता का अभाव होता है, जहां छोटी मोटी समस्याएं मिल बैठकर सुलझा ली जाती हैं, जहां पति पत्नी पिता पुत्र के बीच पारस्परिक सम्मान और सहनशीलता होती है, वही परिवार धरती पर स्वर्ग के समान होता है। इन्हीं मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन से एक सुखी और संपन्न परिवार का निर्माण होता है। ऐसे परिवारों से ही एक सभ्य सुसंस्कृत समाज की कल्पना की जा सकती है।
0: परिवार की महत्वता, इस विषय पर केंद्रित चिंतन अभी आपने सुना। चिंतक थे डॉक्टर जेबी सिंह और श्रोताओं, अब लीजिए आनंद संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पाठ का संगीतमय प्रसारण।

रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस पाठ का संगीत में प्रसारण। और अब समय है कार्यक्रम कृषि सामायिकी का। आज इस कार्यक्रम में जानिए मत्स्य पालन की आधुनिक विधि, और जानकारी दे रही है श्रीमती पूजा श्रीवास्तव।
1: तो सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जाने वाली जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराऊंगी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो मछली पालन है वो एक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने का सशक्त माध्यम है, और जो भी किसान भाई हैं उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को दृढ़ बनाने के लिए, बेरोजगारी से दूर करने के लिए विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। है जैसे कि स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण है, आरएस का निर्माण है, बचत सह राहत है, और समिति अनुदान है। समय समय पर जो भी मत्स्य पालन का काम करते हैं हमारे किसान भाई बहन उनको ऋण के तौर पर या अनुदान राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती है राशि, जिससे वो अपना मत्स्य पालन बहुत अच्छे तरीके से नवीन तकनीकी से कर सकें। इन सारी योजनाओं के अलावा अभी शासन द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जो है योजना भी लागू की गई है, क्योंकि ये पूर्व में भी किसानों के लिए प्रचारित की गई थी, और जो जैसे कृषि विभाग वगैरह है, अन्य विभाग है, उनमें बहुत ज़्यादा इनका प्रचलन था, लेकिन शासन द्वारा ऐसा किया, मान्यता की गई है कि अब चूँकि जो मछली पालन है व्यवसाय है उसमें भी किसानों को ऋण मिल दिया जाए। क्योंकि क्या होता है, किसान जो होते हैं उनके पास में इतना पैसा नहीं होता है, मछली पालन वाले जो किसान भाई बहन होते हैं उनके लिए जब तालाब वो बनाते हैं या उसमें बीज संचयन करते हैं और मत्स्य उत्पादन करते हैं तो इतना पैसा उनके पास नहीं होता है जिससे वो अपने आर्थिक संसाधन जो है वो उपलब्ध करा सकें। इसके लिए शासन द्वारा उनको ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बचत सह राहत एक योजना भी चलती है, जो भी किसान भाई बहन होते हैं वो जो बंद ऋतु का काल होता है हमारे यहाँ जून से जुलाई तक, जिसमें मस्सा खेत पर प्रतिबंध होता है, उस समय उनको बैंकों में 1500 रुपये राशि जमा करना होती है, और उसके मान से फिर उनको शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है, तो उनका आर्थिक रूप से वो सक्षम बनते हैं। ग्रामीण जो पुराने तालाब हैं उसके लिए एक तो क्या है, जो पानी है उसका पीएच लेवल कितना है वो हमें समय समय पर चेक करना चाहिए, उसका ऑक्सीजन लेवल कैसा है मछली के लिए पानी में वो सारी चीज़ें चेक करना चाहिए, उनको जो फीडिंग कराई जाती है, पोषण आहार मछलियों को दिया जाता है वो हमें समय समय पर चेक करना चाहिए कि कितनी मछली उसमें हमने डाली है, कितना उसका उत्पादन हो रहा है, उनको कितनी फीड की आवश्यकता है। किसान क्रेडिट कार्ड का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो मछली पालन के जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति उनकी प्रबल हो, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो समय पर बीज खरीद पाए और संसाधन उपलब्ध कराया जाए, तो उसके लिए उनको ये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जब यह होता है कि किसान भाई बहन जो रहते हैं वो जब उनको बीज की ज़रूरत होती है, जब उनके पास पैसा नहीं होता है या उनको संसाधन है मस्सा खींच करना है तो उनको नाव जाल नहीं मिल पाता है, तो इन सब के मान से उनको समय पर उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तो वो समय पर नवीन तकनीकी से अपना मत्स्य उत्पादन कर सकेंगे। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि उनके सामाजिक आर्थिक रूप से वो सक्षम हों और अपनी नवीन तकनीकी से मत्स्य उत्पादन कर सकें। इसके लिए ये जो भी किसान भाई बहन हैं इनको पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति जो हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, जिनको 10 साल के लिए पट्टे पर दिया जाता है, तालिब जो होता है कोई भी ग्रामीण है सिंचाई है, तो प्राथमिकता तो उन्हीं को ही है कि वो केसीसी अपना बनवाएं। इसके अलावा अब शासन द्वारा ऐसा भी निर्देश दिए गए हैं कि जो गरीब लोग हैं जो मछली पालन का काम करते हैं, जैसे कि नदी है हमारे यहाँ ना, जो छोटे छोटे से तालाब हैं या बड़े तालाब हैं उनमें भी मस्सा कट करके अपना भरण पोषण करते हैं और बिक्रय भी करते हैं मार्केट में मछली का, उन सब के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप जो भी दस्तावेज हैं वो उनका एक फॉर्म है हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड का, वो उसको फिल करना होता है, और उसमें आधार कार्ड उनका, राशन कार्ड, उनकी फ़ोटो और बैंक अकाउंट नंबर, जो उनके जहाँ भी उनका तालाब है यहाँ पर जहाँ पे वो बिक्रय कर रहे हैं या यहाँ से मस्सा कैच करते हैं उसके नज़दीक जो भी बैंक होता है, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, सभी में वो अपने केसेस प्रस्तुत कर सकते हैं।
0: मत्स्य पालन की आधुनिक विधियाँ, इस विषय पर आपको जानकारी दे रही थी श्रीमती पूजा श्रीवास्तव, कार्यक्रम कृषि समायकी के तहत। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि समायकी अब संपन्न हुआ। और श्रोताओं, अब लीजिए जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रस्तुत है कार्यक्रम

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह 7:05 पर सुनिएगा सांप्रदायिक सद्भाव पर केंद्रित लघु वार्ता। हिंदी वार्ता सुनिएगा सुबह 7:20 पर। विषय रहेगा डॉक्टर अमृतलाल नागर, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। वार्ताकार होंगी डॉक्टर अनामिका। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 7:30 पर और सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी शिवपुरी की विशेष प्रस्तुति, सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी, आप सुनेंगे रोजाना की तरह सुबह 7:45 पर। आपके फरमाइशी खतों के साथ हाजिर होंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर सुबह 8:30 पर और सुबह 9:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग सुनिएगा सुबह 9:00। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे राम गोपाल सत्यार्थी और बद्री प्रसाद काडेरिया। जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा सुबह 10:00। भोपाल केंद्र से ही अनुप्रसारित अन्य कार्यक्रमों में सुबह 11:00 सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। ये सभी कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी भोपाल केंद्र द्वारा। हमारे स्टूडियो से सुनिएगा सुबह 10:05 पर कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार होंगे सुरेश वाडकर। श्रोताओं, हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 7:21 पर ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम चौपाल। आज कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे तन मन धन सबसे ऊपर धन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऊर्जा संरक्षण क्यों और कैसे। साथ ही एक भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे। विषय रहेगा बरसात पूर्व एवं आरंभिक बारिश में पशुधन की उचित देखभाल। वार्ताकार होंगी डॉक्टर भगवती प्रसाद यादव और आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। आनंद लीजिएगा कुछ लोकगीतों का और जानिएगा मौसम का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ ही संपन्न हुआ कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: स्वागतम् इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पूताः INS दुनागिरिः INS संशोधकः INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है इनका निर्माण भारत में हुआ है इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है
0: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे द्विशताधिकाः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिकवर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सवरूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान् तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्यकल्याणयोः समानलक्ष्ये संयोजयति प्रधानमन्त्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वनकर्मचारिभिः स्थानीयजनैश्च सह संवादं करिष्यति अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति पञ्चशताधिकाः व्याघ्राः सन्ति तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति नीट यूजी षड्विंशत्युत्तर द्विसहस्र पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु चत्वारिंशदधिक चतुश्शतोत्तर पञ्चसहस्र परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन् दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन द्वादश श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु सप्ताशीत्यधिक शतं प्रतिशतं परिणामाः घोषिताः सन्ति अवशिष्टपरिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इत्युक्तम् छात्राः मिथ्याप्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां सप्त जनाः मृताः सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितम् आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान् फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा

0: बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सांप्रदायिक सद्भाव पर केंद्रित लघु वार्ता।

कब कहा भगवान ने, कब है बोला वो खुदा। ईंट गारे से मेरा एक घर बना, मुझको बिठा। चाहता है वह तो बस दिल में तेरे थोड़ी सी जगह, फिर तू ही चारों धाम है मक्का, तू यही काबा तेरा। श्रोताओं, हमने ईश्वर को अलग अलग नाम दिए और अलग अलग स्थानों पर बिठाकर अपने अपने विचारों के चलते उन्हें पूजा, उनकी अर्चना की, उनकी इबादत की। पर क्या ईश्वर ने हम में कभी भेद किया? बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर की नीति हर जगह, हर समय, हर हाल में हमें एक ही बताती है। कुरान हो, गीता, बाइबल, सभी में उनका संदेश एक है। हर धर्म में यह कहा गया है कि आपस में प्रेम भाव बना रहे। हमारे देश में अनेक संप्रदाय, जाति, वर्ण के लोग रहते हैं और सभी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार धर्म को मानते हैं। अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ करने का उन्हें संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त है। श्रोताओं, प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में धर्म को मानव जाति के लिए एक संपूर्ण अंग माना है और धर्म को ही वो साधन बताया गया है जो हर व्यक्ति के अंदर एक कर्तव्य भावना को प्रेरित करता है। धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों का आधार ईश्वर को पाना, मोक्ष को पाना माना गया है। धर्म तो हमें आपस में जोड़ता है, आचार विचारों को शुद्ध करता है और ये बात

बिल्कुल सही है श्रोताओं, कि जिस देश में धर्म को उच्च स्थान दिया जाता है उस देश का सतत विकास होता है। इसके विपरीत जहां पारस्परिक घृणा मन मिटाव का वातावरण होता है उस देश के विकास की गति भी रुक जाती है या धीमी हो जाती है। और इसलिए हमारा देश धर्म निरपेक्ष राज है और अनेक धर्म और जाति के होते हुए भी यहाँ अनेकता में एकता के और भाई का भाई से आपस में प्रेम दिखाई पड़ता है। और यही सबसे सटीक कारण है कि आज हमारा देश विकासशील देशों की गिनती में गिना जाता है। परंतु ये बात भी बिल्कुल सही है श्रोताओं कि कभी कभी हमारे तर्क वितर्क, हमारे नकारात्मक विचार, हमारा अज्ञान ही हमारी एकता में बाधा बन जाता है, जो कि एक गंभीर समस्या भी बन सकता है। लेकिन मनन चिंतन करें तो समस्या का हल तो तब भी हो सकता है जब हम सहिष्णुतापूर्ण विचारों को अपने मनो मस्तिष्क में स्थान देंगे, मानव को सिर्फ मानव समझेंगे, बेकार के भेद, सांप्रदायिक अलगाव, इन सभी के दुष्प्रभावों को समझकर उन्हें अपने जीवन में प्रवेश नहीं होने देंगे और सांप्रदायिक तनावों को दूर कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को स्थापित करेंगे, तभी हम कह सकेंगे कि हमारा भारत देश महान, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सांप्रदायिक सद्भाव पर केंद्रित लघु वार्ता। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कुनू नेशनल पार्क में चीता परियोजना की प्रगति का जायजा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए दुनिया भर के लोगों का जताया आभार। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 133 करोड़ रुपए से अधिक की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। और प्रदेश में 26 जून तक हीट वेव, गर्मी और आंधी बारिश वाला मौसम। आज 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्योपुर जिले स्थित कुरु नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापना परियोजना की प्रगति का जायजा लेंगी। इसके बाद वे सहरिया जनजाति के चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, स्थानीय वन्य कर्मियों से मुलाकात करेंगी। कल राष्ट्रपति ने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया था, जहां उन्हें बताया गया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं, जिनमें से 49 कुनू नेशनल पार्क में हैं। दौरे के बाद आज राष्ट्रपति श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कल जबलपुर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच आत्मीय संवाद हुआ। संस्कृति और श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपति के प्रदेश आगमन पर स्वागत करते हुए माँ नर्मदा की सुंदर प्रतिमा भेंट की। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने मुख्यमंत्री को भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की तस्वीर तथा कोणार्क सूर्य मंदिर के विश्व प्रसिद्ध

0: शुक्र की प्रतिकृति उपहार स्वरूप प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए दुनिया भर के लोगों का आभार जताया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि दिन आने वाले समय में अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्री क्षमता किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन नौसैनिक पोतों दुनाकिरी संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर जिले के इछावर और भैरुंदा में आयोजित जन कल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति में पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 67 ग्रामीण सड़कों के लिए 133 करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृति पत्र सरपंचों को प्रदान किए, जिनसे 36,000 से अधिक ग्रामीण लाभान्वित होंगे। वहीं भैरुंदा में श्री चौहान ने 28.53 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री वैष्णव ने इस दौरान मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। रेल मंत्री ने बताया कि यह टर्मिनल लगभग 450 रेलगाड़ियों के संचालन में सक्षम होगा, जिससे परिचालन दक्षता और यात्री सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने सीकर जिले के सुंदरपुरा में एक नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की घोषणा भी की, जिससे श्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। CBSE ने छात्रों से सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। घर के मुंडेर पर चहचहाती गौरैया अब शहरों से लगभग गायब हो चुकी है, लेकिन पन्ना जिले में एक शख्स ने इस नन्ही चिड़िया को फिर से बसाने की ऐसी मुहिम छेड़ दी है कि सैकड़ों गौरैया अब फिर से चहचहाने लगे हैं। आज सुनिए कि कैसे एक इंसान की संवेदनशीलता ने पूरे गांव को गौरैया का सुरक्षित आशियाना बना दिया। विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे पन्ना संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा।
3: पन्ना के पटना तमोली गांव में ग्राम पंच समिति अध्यक्ष अजय चौरसिया द्वारा बरसों से गौरैया संरक्षण के लिए अनूठा प्रयास किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए दाना और पानी की भी नियमित व्यवस्था की जाती है। इसका लाभ केवल गौरैया ही नहीं बल्कि क्षेत्र के कई अन्य पक्षियों को भी मिल रहा है।
4: मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी छोटी सी मुहिम न जाने कितने पक्षियों की जिंदगी को संवार सकती है। प्रकृति संरक्षण का कार्य बड़े संसाधनों से नहीं बल्कि संवेदना से हो सकता है। आज सैकड़ों बच्चों ने उन पक्षी घरों में जन्म लेकर के चहचहा रहे हैं और उनकी चहचहाहट से पूरा घर आंगन गुलजार हो रहा है।
3: इस पहल का सकारात्मक प्रभाव पूरे गांव में दिखाई देने लगा है। वन मंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना वन मंडल अनुपम शर्मा का मानना है।
5: अजय चौरसिया जी जो कि पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता भी हैं, इन्होंने जो गोल वाली एक लौकी होती है उससे गौरैया के घोंसले बनाने का उन्होंने प्रण लिया और कई प्रयास भी किए। हर घोंसलों में गौरैया आई और उन्होंने दो दो तीन तीन बच्चे भी दिए, तो आज के डेट में ये काफी एक सक्सेसफुल मुहिम के तौर पर पटना तमोली में है।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
0: प्रदेश पुलिस ने राज्य भर में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाते हुए पिछले 10 दिनों में करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए के नशीले पदार्थ और अन्य संपत्ति जब्त की है। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के 14 अंचलों में संस्कृति विभाग के तत्वावधान में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में खेले गए इस मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका के मारेजान कैप ने नाबाद 81 रन की पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 26 जून तक हीट वेव, गर्मी और आंधी बारिश वाला मौसम बना रहेगा। मॉनसून के नहीं आने और प्री मॉनसून गतिविधि कम होने से उमस और गर्मी बढ़ गई है, जिसका असर पिछले 2 दिन से जबलपुर संभाग में लू के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आज तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में 28 से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। आगरमालवा में दिव्यांग और वरिष्ठों के लिए आज से 25 जून तक जिले के विभिन्न स्थानों पर चिन्हांकन शिविर आयोजित होंगे। नीमच में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 कल जिले के 2 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वहीं धार जिले में भी 3 निर्धारित केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हुई। जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। अशोकनगर पुलिस को 3 जिलों में सक्रिय लूट गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है, जिसमें से एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुना में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हनुमान टेकरी परिसर में किया गया। वहीं नर्मदापुरम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल पूरा जिला योगामय नजर आया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी वार्ता। डॉक्टर अमृतलाल नागर, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। वार्ताकार हैं डॉक्टर अनामिका। लीजिए सुनिए।
2: अमृतलाल नागर का नाम आते ही एक ऐसी विलक्षण लेखकीय प्रतिभा का नाम उभर कर आता है जो रचना धर्मिता को पूर्ण रूपेण समर्पित था। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, बाल साहित्य, साक्षात्कार, ललित निबंध, कविता, लोक नाट्य, यहाँ तक कि फिल्मों में पटकथा लेखन और रेडियो नाटक जैसी कोई भी विधा ऐसी नहीं रही जिसे नागर जी ने स्पर्श ना किया हो, परंतु पाठक संसार उन्हें केवल एक उपन्यासकार के रूप में ही जानता है। ऐसे साहित्यकार डॉक्टर अमृतलाल नागर का जन्म आज के ही दिन अर्थात 17 अगस्त 1916 को आगरा के पास गोकुलपुरा गांव के एक कुलीन गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा राम नागर था। यह परिवार किन्हीं कारणोंवश आगरा से लखनऊ आकर बस गए थे। अमृतलाल जी का मधुर बालपन, युवावस्था और समूचा जीवन लगभग लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इन्हें अपनी कर्म भूमि से हार्दिक लगाव रहा। नागर जी की नियमित शिक्षा तो 10वीं तक ही हुई, परंतु स्वाध्याय द्वारा इन्होंने वेद पुराण, साहित्य, पुरातत्व इतिहास, समाज शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया। हिंदी और गुजराती के अतिरिक्त इनका मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी तथा रूसी भाषा पर भी समान अधिकार था। जैसा कि प्रायः हुआ है, रचनाकारों की भूमिका काव्य सृजन से ही प्रारंभ हुई है। अमृतलाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने संस्मरण जिनके साथ जिया मैं भी लिखते हैं, कविता के अंकुर तुकबंदियों के रूप में फूटने प्रारंभ हो गए थे। कुछ हद तक वे पल्लवित भी हुए पर पुष्पित ना हो सके। अपनी कविताई का उपनाम मेघराज इंद्र रखा, किंतु कुछ कविताओं की सृजन वर्षा कर मेघराज इंद्र सदा सदा को सो गया। कविता करना मेरे वश में ना था। 16 वर्ष की किशोरावस्था से नागर जी की सृजन यात्रा प्रारंभ हुई। नागर जी ने जिस प्रकार मेघराज इंद्र उपनाम से कविताएं लिखी, उसी प्रकार अपने व्यंग, निबंधों तथा रेखाचित्रों के लिए तस्लीम नखनवी उपनाम रखा। परंतु कहानियां और उपन्यास उन्होंने अपने मूल नाम अमृतलाल नागर के नाम से ही लिखे। यह सत्य है कि कहानी साहित्य सहित अन्य विधाओं का लेखन उन्हें साहित्य जगत में स्थापित नहीं कर सका। सन 1943 में इनका प्रथम उपन्यास महाकाल प्रकाशित हुआ, परंतु इन्हें 1956 में प्रकाशित उपन्यास बूंद और समुद्र से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस उपन्यास में पौराणिक शिल्प का आश्रय ग्रहण करते हुए अधुनातन सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है। इस उपन्यास का महिला पात्र ताई का जटिल चरित्र है, जो घृणा और करुणा, द्वेष और वात्सल्य तथा प्रतिहिंसा और उत्सर्ग की विलक्षण समष्टि है। इस उपन्यास में बूंद मनुष्य का तथा समुद्र समाज का प्रतीक है। इस उपन्यास के पूर्व 1944 में इनका एक और उपन्यास सेठ बांक के मल प्रकाशित हो चुका था, जो हास्य व्यंग की धारा से परिपूर्ण था। 1959 में शतरंज के मोहरे, 1960 में सुहाग के नुपुर, 1966 में अमृत और विष, 1968 में सात घूंघट वाला मुखड़ा, 1971 में एकदा नैमिषारण्ये, 1972 में मानस का हंस, 1974 में खंजन नयन एवं 1977 में नाच्यो बहुत गोपाल जैसे कालजयी उपन्यास नागर जी ने हिंदी जगत को दिए। चैतन्य महाप्रभु और करवट भी चर्चित उपन्यास रहे। नागर जी का रचना संसार केवल साहित्य तक ही सीमित नहीं है, इन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं। गदर के फूल, ये कोठे वालियां, तथा जिनके साथ जिया नागर जी की विख्यात संस्मरणात्मक कृतियां हैं। हास्य व्यंग की विख्यात पत्रिका चकल्लस, साहित्यिक पत्रिकाओं नया साहित्य तथा प्रसाद और फिल्मी पत्रिका सुनीति सिनेमा समाचार का कुशलतापूर्ण संचालन कर नागर जी ने परिपक्व पत्रकार होने का परिचय दिया। बच्चों के लिए भी नागर जी ने पर्याप्त लिखा। नागर जी ने विपुल अनुवाद कार्य भी किया। अनेक भेंट वार्ताएं और रेडियो रूपक, रेडियो नाटक तथा रंगमंची नाटकों का सृजन भी नागर जी ने किया। इनके सक्रिय और समग्र साहित्यिक अवदान पर अनेक सम्मान और पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। बूंद और समुद्र उपन्यास पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का बट्टू प्रसाद पुरस्कार व सुधाकर रजत पदक, सुहाग के नुपुर पर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रेमचंद्र पुरस्कार, अमृत और विष उपन्यास पर 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसी कृति पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1970 में तथा 1972 में साहित्य सेवा के लिए युगांतर पुरस्कार आपको प्रदान किया गया। आपकी दीर्घकालिक साहित्य आराधना को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। नागर जी ने सन 1953 से लेकर सन 1956 तक आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर भी रहे। इन दिनों में इन्होंने रंगमंच, विशेष रूप से लोक नाट्य परंपरा पर विशेष कार्य किया। उन दिनों नौटंकी लोक नाट्य विधा अपने चरम पर थी, परंतु समय के प्रवाह के कारण इसमें परिवर्तन होने प्रारंभ हो गए थे। नागर जी ने नौटंकी लोक नाट्य विधा के संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास किए।

0: शंकर जी की कृतियों में एक वैशिष्ट्य और रंजकता है जो उन्हें हिंदी के अन्य कथाकारों से पृथक पहचान प्रदान करती है। वे ना तो परंपरा को नकारते हैं और ना ही आधुनिकता से मुंह मोड़ते हैं। वे अध्यात्म पर गहरी आस्था व्यक्त करते हैं तो समाजवाद के प्रति भी समर्थन व्यक्त करते हैं। नाच्यो बहुत गोपाल में अध्यात्म और समाजवाद का यह समन्वित रूप स्पष्टतः व्यक्त हुआ है। नागर जी की आध्यात्मिकता किसी संप्रदाय के कटघरे में कैद नहीं है, ठीक उसी प्रकार उनका समाजवाद किसी राजनीतिक दल का दास नहीं है। वे अपनी कल्पना में व्यक्ति और समाज दोनों के स्वस्थ संबंधों का संवर्धन चाहते हैं। अध्यात्म और समाजवाद की भांति विश्व के संबंध में भी उनके विचार समन्वित हैं। जगत के प्रति उनका दृष्टिकोण ना तो अतिरेक पूर्ण है और ना ही हठाग्रही। एकांगदर्शी होने के कारण वे अच्छाइयों और बुराइयों को अपने पात्रों द्वारा अभिव्यक्त देते हैं, परंतु बुराइयों से उठकर अच्छाइयों की ओर असफलता को भी वे इंसानियत की विजय मानते हैं। पाखंड, मूल्यहीनता, आर्थिक स्वार्थ, अंध धार्मिकता से नागर जी अपने लेखन में सामना करते रहे हैं। आलोचकों और बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने तो इनकी सपाट लेखन शैली के कारण इन्हें लेखकीय समाज से ही खारिज किया है, परंतु लाखों लाख पाठकों ने इनकी कृतियों तथा इनके लेखन को अपना स्नेह और दुलार दिया है। नागर जी ने शिल्प पर कभी अनावश्यक बल नहीं दिया। वे कहते हैं, फॉर्म के लिए मैं कभी परेशान नहीं हुआ, बात जब भीतर भीतर पकने लगती है तो वह अपना फॉर्म खुद अपने साथ लाती है। मैं सरलता के लेखक का अनिवार्य गुण मानता हूँ। जटिलता, कृत्रिमता तथा दाव पेच से लेखक महान नहीं बन सकता, इसलिए केवल फॉर्म के पीछे दौड़ने वाले लेखक को मैं टुटपुंजिया मानता हूँ। नागर जी की कृतियों में भाषाई सौंदर्य अद्भुत है। पात्रों के विविध वर्गों के मध्य उनकी मन स्थिति के अनुरूप भाषा का सहज प्रवाह इनकी कृतियों में प्रभावित होता है। बोलचाल की सामान्य चंचल चुटीली भाषा गंभीर दार्शनिक प्रसंगों तथा सामाजिक प्रसंगों के विविध दृश्यों का स्वतः ही शब्द चित्र बनाती जाती है। भाषा की भांति शैली पर भी नागर जी का असाधारण अधिकार है। बूंद और समुद्र उपन्यास में पौराणिक शिल्प का प्रयोग किया गया है। अमृत और विष उपन्यास में पात्रों की दोहरी सत्ता के आधार पर दो दो कथाओं को एक साथ चलाया गया है। मानस का हंस और खंजर नयन में फ्लैशबैक पद्धति का व्यापक प्रयोग किया गया है। सेठ बांकेबल और शतरंज के मोहरे उनकी विनोद प्रियता के प्रमाण हैं। तात्पर्य यह है कि नागर जी की कृतियाँ एक ही शैली के चौखटे में फिट नहीं है, उसमें वैविध्य है। नागर जी ने जीवन भर लिखा और अनवरत लिखा। उनकी लेखनी न रुकी और ना ही थकी, परंतु काल के प्रवाह और प्रभाव ने उनकी लेखनी की गति को रोक दिया। 23 फरवरी 1990 को हिंदी के इस महान लेखक ने अपनी जीवन लीला समाप्त की।
1: डॉक्टर अमृतलाल नागर, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। इस पर अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता। वार्ताकार थी डॉक्टर अनामिका। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: श्रोताओं, फिल्म हीरो के लिए अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था। कार्यक्रम फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। गीत आपको और भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए जरूरी संदेश।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: संदेश के बाद स्वागत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रुदाली का ये गीत। गीत लिखा है गुलजार साहब ने और संगीत भूपेंद्र हजारिका का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रुदाली के लिए लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार का लिखा गीत। संगीत भूपेन हजारिका का था। और इसके साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत आप सभी का सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में। श्रोताओं, आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुमिता। श्रोताओं, आज के आधुनिक और तेज रफ्तार वाले जीवन में हर व्यक्ति सफलता और खुशियों की तलाश में लगा हुआ है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन में बड़ा बदलाव या ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए बड़े कदम उठाने बहुत जरूरी है और एक बड़ी छलांग लगाने के चक्कर में अक्सर हम उन छोटी छोटी बातों को या कहें आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारी सफलता में हमारी सहयोगी होती है। वास्तव में श्रोताओं, हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े परिवर्तन की नींव रखती हैं, बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। समय पर उठना, नियमित अध्ययन करना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की सहायता करना, सकारात्मक सोच रखना और सबसे खास बात, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। ये आदतें न केवल हमें अनुशासित बनाती हैं बल्कि सफलता की ओर भी हमें अग्रसर करती हैं। कई बार लोग एक ही दिन में सब कुछ बदल देना चाहते हैं हम रातों रात अमीर हो जाएं, एक ही झटके में हमारा प्रमोशन हो जाए, और इस जल्दबाजी के चक्कर में बिना सोचे समझे कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। पर हकीकत में यदि हम विचार करें श्रोताओं, तो हमारी पूरी सफलता हमारे द्वारा सूझबूझ से किए गए कार्यों और निरंतर प्रयासों से ही प्राप्त होती है। जैसे एक कहावत है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। श्रोताओं, हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और आजकल सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्टनेस भी होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी छोटी छोटी आदतें जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती हैं और ये हमारे सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी आदतें हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। श्रोताओं, हमारी छोटी छोटी आदतें हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं और ये आदतें हमें शुरुआत से ही अपने अंदर डालनी चाहिए। समय का सदुपयोग करना, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना, अपने कार्यों को समय पर पूरा करना, अपने प्रत्येक कार्य को महत्व देना और उसे एक चुनौती के साथ समय पर पूरा करने का प्रयास करना, अपने कार्यों को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यदि हम स्वस्थ हैं तभी हम कुछ बेहतर सोच पाएंगे और कुछ बेहतर कर पाएंगे। और खुद को स्वस्थ रखने के लिए भी श्रोताओं, कुछ अच्छी आदतों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे सुबह जल्दी उठकर सैर करना, व्यायाम करना, जो पूरे दिन हमें तरोतारा ताज़ा रखने के साथ साथ स्फूर्ति भी बनाए रखने में हमारी मदद करता है। पर्याप्त नींद लेना, पर्याप्त पानी पीना, कुछ समय प्रकृति के बीच भी बिताना, मनपसंद संगीत सुनना या फिर जो हमारी हॉबी है, हमको जो करना पसंद है उसके लिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए। बहुत बार लोगों को कहते

ये सुना है कि अपने पसंद का काम करना, घूमना फिरना किसे पसंद नहीं, पर इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास वक्त तो हो। लेकिन सच कहूँ श्रोताओं, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय यदि हम अपने स्वयं के लिए, अपनी स्वयं की खुशी के लिए निकालते हैं, तो हम 4 गुना स्फूर्ति के साथ भी कार्य कर पाएंगे और हमारे फ्रेश माइंड से जो विचार निकलेंगे वो हमें सफलता की ओर ज़रूर ले जाएंगे। इसी प्रकार श्रोताओं, समाज में भी छोटे छोटे अच्छे कार्य मिलकर सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं और समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। इसलिए श्रोताओं, ये सुविचार हमें सिखाता है कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े अवसरों का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम आज से ही छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाना शुरू कर दें तो भविष्य में उनका परिणाम बहुत बड़ा और सुखद होगा। इसीलिए हमें हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता का आधार बनती है और आज की एक अच्छी आदत कल का उज्जवल भविष्य बनाती है।

और श्रोताओं, अब समय है कुछ खबरों और जानकारियों का आप तक पहुंचाने का। तो आप तक पहुंचा रहे हैं ये खबरें। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद पंचायत पिछोर की ग्राम पंचायत खोड़ स्थित धार महादेव मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में स्वस्थ आयु के लिए योग की थीम के साथ आयोजित योग कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के साथ सामूहिक योगाभ्यास का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है जो हमें निरोगी काया और मानसिक शांति प्रदान करती है। उन्होंने इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग पर विशेष जोर देते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीणों का आह्वान किया कि वे योग को अपनाकर न केवल स्वयं को स्वस्थ रखें बल्कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएं। योगाभ्यास सत्र के दौरान नागरिकों में विशेष उत्साह भी देखा गया। योग के माध्यम से स्वास्थ्य का संदेश देने के साथ ही प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाते हुए अपने आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए उपस्थित जनसमूह को प्रोत्साहित किया। जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्राम पंचायत खोड़ स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाद्यान्न वितरण केंद्र के स्टॉक रजिस्टर का सूक्ष्म अवलोकन किया तथा POS मशीन के माध्यम से की जा रही राशन वितरण प्रक्रिया की सघन जांच की। प्रभारी मंत्री ने केंद्र पर उपलब्ध खाद्यान्न की गुणवत्ता को भी स्वयं परखा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हितग्राहियों को उच्च गुणवत्ता युक्त राशन प्राप्त हो। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए मंत्री श्री ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर और सही मात्रा में राशन मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति की राय व विचारों का महत्व होता है। इसी भाव के साथ समान नागरिक संहिता के संबंध में आमजन को सुझाव एवं मत प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जन परामर्श पोर्टल शुरू किया गया है। जिले के नागरिक भी इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार, सुझाव और सुझावात्मक टिप्पणियां 22 जून यानी आज तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। समान नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव देने के लिए नागरिक अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर सकते हैं अथवा सीधे पोर्टल https://ucc.mp.gov.in पर जाकर अपने विचार दर्ज कर सकते हैं। जिला प्रशासन में जिले के सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों, प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं एवं विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधियों से ये अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस जन परामर्श प्रक्रिया में भाग लेकर अपने सुझाव एवं मत दर्ज कराएं, जिससे व्यापक जनभावनाओं के अनुरूप प्रभावी एवं समावेशी नीति तैयार की जा सके। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा अधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी श्री राजेंद्र प्रसाद सोनी के गरिमामय मार्गदर्शन में जिले की समस्त जेलों में आयोजित 7 दिवसीय राज्यव्यापी योग अभियान का कल रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य समापन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महिला कैदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर मोनिका मंगल एवं उनकी चिकित्सा टीम द्वारा महिला कैदियों का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें स्वास्थ्य से जुड़े आवश्यक चिकित्सीय परामर्श एवं दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। इस राज्यव्यापी योग अभियान का मुख्य उद्देश्य बंदियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना, उन्हें अवसाद मुक्त करना और योग के प्रति जागरूक करना था। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जन चौपाल में नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनपद पंचायत पिछोर को ग्राम पंचायत

लाहौर में आम जन की समस्याओं के निराकरण एवं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जन चौपाल का आयोजन किया गया। विभागों से संबंधित समस्याओं को प्रभारी मंत्री श्री तोमर जी ने एक एक कर बड़ी गंभीरता के साथ सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवेदन सौंपकर उनके उचित और त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया। और अब जाने से पहले हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं मौसम की जानकारी। श्रोताओं, आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। वातावरण में नमी यानी कि आर्द्रता 62% अनुमानित की गई है और हवा चलने की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। जाने से पहले यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। और अब दीजिए कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी सुमिता को अनुमति।

0: नमस्कार शिवपुरी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। सुबह के 8 बजने को है। अब समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की

0: पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं प्रिग्नैनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया।

0: मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया। ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था। वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर

0: ही अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर ये परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
3: भारत आज अपने पूरे maritime ecosystem को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड दीज रिमार्क्स आफ्टर कमिशनिंग 3 इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स, INS दूनागिरी, INS संशोधक एंड INS अग्रय एट द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता यस्टरडे। Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying, and anti-submarine warfare.
3: जब समुद्री विरासत की बात होती है, तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
2: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base, and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
4: President Draupadi Murmu went on a safari at Kuno National Park this morning. The president will also interact with the members of the Saharia tribe working as cheetah mitras, cheetah trackers, local forest personals and tourist guides to learn about their experiences and role in the project. Earlier on Sunday, President Murmu visited the Cheetah Command and Control Center at Kuno. The president viewed an exhibition related to the cheetahs project. Officials informed her that India currently has 52 cheetahs, of which 49 are in the Kuno National Park, while 3 have been shifted to the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. She was also briefed about the monitoring and tracking system used for the animals. Prime Minister Narendra Modi launched India's ambitious cheetah reintroduction project in 2022 by releasing 8 cheetahs into Kuno National Park on his birthday. Subsequently, more cheetahs were brought from South Africa and Botswana. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
2: India will host the 2-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Jeetu Bhal will chair the meeting. A report.
5: During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counter-terrorism and on security in the use of information and communication technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
2: The National Testing Agency or NTA will commence the UGC NET June 2026 examination from today. We have a report.
6: The national level eligibility test will be conducted in computer-based test CBT mode until 30th of this month in 2 shifts each day. The UGC NET is conducted for candidates aspiring to qualify for the Junior Research Fellowship JRF, assistant professor positions and admission to PhD courses. The NTA has advised candidates to download their admit cards and carefully verify all examination details. It said that candidates must check their examination date, shift, timing and allotted examination center before the exam day. Moreover, persons with disabilities or persons with benchmark disabilities candidates have been advised to visit their allotted centers in advance to familiarize themselves with the location and facilities. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: The NTA has refuted claims of a video circulating on social media that the NEET UG 2026 re-examination question paper was leaked on Telegram before the examination. In a social media post, NTA said that the examination was conducted successfully under comprehensive security and surveillance. It further said that manufacturing and deliberately circulating such misinformation to defraud or alarm students is a serious offence. NTA said that it is taking action against those responsible for originating this content with the support of Indian Cybercrime Coordination Centre and law enforcement agencies. The Central Board of Secondary Education or CBSE has commenced the release of Class 12 verification of issues observed and re-evaluation outcomes. The status of applications can be checked at results.digilocker.gov.in. A report.
7: The CBSE said in a statement that the outcomes are being released in a phased manner with over 80% of the total applications received was declared yesterday. The outcomes of the remaining applications will be made available in phases and the entire process is expected to be completed soon. CBSE has assured students that every application has been processed through a robust, transparent and carefully monitored system to ensure fairness and accuracy. Students have been advised not to believe rumors rumors or unverified social media posts and to rely only on official CBSE communications for authentic

श्रोताओं, फिल्म तोहफा के लिए अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में इंदिवर का लिखा गीत और संगीत बप्पी लहरी का था। और इस गीत को सुनने के लिए हमें ख़त भेजा था नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा था ग्राम व पोस्ट देहरौद, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी से डॉक्टर शिवनारायण अग्रवाल, राम निवास, मिदाम चिटार, मुंशी धाकर, सूरज सिंह रावत, देवेंद्र कुमार रावत और मोहन सिंह रावत। तो श्रोताओं, आपकी फरमाइश हुई पूरी। अब हम ले रहे हैं अगला फरमाइशी खत जो हमें लिख भेजा है गांधी पार्क मनपुरा, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी से मनोज नामदेव, मंची नामदेव, शिवम, राहुल, नरेंद्र, दासू, छोटू, मिन्नी, सपना, खुशबू, रीना, रेखा, ममता और समस्त नामदेव परिवार। गुरु नानक कॉलोनी बौड़ापुर ग्वालियर से श्यामलाल बत्रा, लता, अंजलि, पलक, मिनी और रमन बत्रा। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में फिल्म हिम्मत वाला का ये गीत। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत एक बार फिर से बप्पी लहरी का। लीजिए सुन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप ही के पसंद के कुछ फिल्मी नगमे, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अगला फरमाइशी गीत हम ले रहे हैं फिल्म सरगम से, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है कमलागंज बाबू क्वार्टर के पीछे से श्रीमान कन्हैया कुशवाहा, भारती, ध्रुव, गगन, सोनम, अशोक, दुर्गेश, सुरेंद्र और सागर कुशवाहा। करेरा काली माता के पीछे से मनोज झा, मिथिलेश, नैना, मोनू और विकास झा। गणेश कॉलोनी खंडेलवाल फैक्ट्री के पीछे से श्रीमान कालीचरण, ऊषा, शुभम, कुमकुम, शिवानी, हरिओम, गुड्डी, ऋतिक और ऋतु। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म सरगम का ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हम ले रहे हैं सखी रेडियो श्रोता संघ शिवपुरी से सोनिया, दीपिका, निधि, नीना, अंजू, अलका, विनीता, अंकिता, सोनम, सलोनी, अर्चना, अल्पा, सोनाली, पूजा, शालिनी, खुशबू, शिप्रा, रिचा और इनकी सभी सखियां। न्यू ब्लॉक शिवपुरी से श्रीमती निर्मला देवी, संध्या, मोनिका, तरुण, अरुण, अभय, जया, अमन, शुभम, अक्षय, विहान, डॉली और परिवार के इनके सभी सदस्य। गांधी कॉलोनी शिवपुरी से सौरभ गौड़, ममता, कृष्णा, इशिता और परिवार के इनके सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म तलाश का ये गीत। गीत रचना समीर की है और संगीत संजीव दर्शन का। लीजिए सुनिए।

और श्रोताओं, अब पहुंच चुके हैं हम कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर। और इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, श्रीमती सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी और सूरज ठाकुर। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम मिलिंद दोवेश अंबिका और योगिता नेताम। इसी गीत को सुनने के लिए खत आया है राजपुर मध्य प्रदेश से गीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरव और कुणाल दिलवारे। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हम है राही प्यार की। इस फिल्म का ये गीत आवाज़ अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीत लिखा है समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का। लीजिए।

हम है राही प्यार की। इस फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर एक बार फिर से हम हाजिर होंगे सुबह 9:30 पर। लेकिन फिलहाल दीजिए अब कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राम गोपाल सत्यार्थी और बद्री प्रसाद काडेरिया का के गाए कुछ लोकगीत। शुरुआत में लीजिए सुनिए राम गोपाल सत्यार्थी का गाया ये लोकगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बद्री प्रसाद काडेरिया का गाया ये।

0: कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम में लोकगीत आपको और भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए जरूरी संदेश।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: संदेश के बाद स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम लोक रंग में। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए राम गोपाल सत्यार्थी के गाया ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज कलाकार थे राम गोपाल सत्यार्थी और बद्री प्रसाद काडेरिया। कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 9:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं फिल्म इम्तिहान का ये गीत सुनिए, फिर हम बताते हैं ये हमारी किन श्रोताओं की पसंद है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इम्तिहान फिल्म के लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना और संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें ख़त भेजा था जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी, अनरत, हल्ली, लल्लू, ऋषि रैकवार और बड्डा। इसी गीत को सुनना चाहा था संजय रेडियो श्रोता संघ ग्राम व पोस्ट छित्री तहसील नरवर जिला शिवपुरी से संजय कुमार केवट, नवल किशोर, मुकेश, भीकम, अंकित, प्रशांत, मयंक, दिलीप, देव, हेमानी, राखी, वर्षा, लक्ष्मी, गिरजा, भावना, रेखा, किरण, छाया, कृष्णा, अंजलि और परिवार के इनके सभी सदस्य। तो श्रोताओं, पूरी हुई आपकी फरमाइश, अब हम अगली फरमाइश ले रहे हैं गांधी कॉलोनी शिवपुरी से सौरभ गौड़, ममता, कृष्णा, अशिता और परिवार के इनके सभी सदस्य। इसी गीत के लिए खताय है अंबेडकर चौखरई से राम सखी परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एल पी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन एवं समस्त परिवार। ग्राम बिजौरा जिला सागर से गोलू अहिरवार, दिनेश, अजय और समस्त परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं, आप ही के पसंद के कुछ फिल्मी नगमे, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अगला फरमाइशी खत हम ले रहे हैं फक्कड़ कॉलोनी शिवपुरी से लखन डोंगर, बबली, राधिका, सारा, मिनी, आरती, पूजा और समस्त डोगर परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा है शिवपुरी से राम भारत जाटव, चंदा जाटव, यश, लीला और ईश्वर लाल। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला फरमाइशी खत लिया है पुरानी छावनी सकतपुर रोड जिला गुना मध्य प्रदेश से कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार, गोलू, कृष्णा, वर्षा, पूनम और मोहिनी कुशवाहा। इस गीत को सुनना चाहा है गांव बड़बू जी आगर से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुवाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म काम चोर का ये गीत, आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

और श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर। और इस गीत के लिए हमें खत आया है रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, श्रीमती साहू, अजय कुमार साहू और जय किशन साहू। इस गीत को सुनने के लिए एक और खत हमें आया है ग्राम दुर्गापुर, पोस्ट बडेरा, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी से मानसिंह आदिवासी श्रीमती मीना देवी, बिटिया वैष्णवी, भावना, पुष्पा, सतेंद्र, राहुल, राजकुमार, हरविलास, भूरी, इमरती आदिवासी, मुन्ना लाल जी एवं समस्त आदिवासी परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म एक नया रिश्ता। इस फिल्म का ये गीत लिखा है नक्शलयालपुरी ने और संगीत खयाम साहब का।

और श्रोता, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 16.2 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 10 बजने को है। अब कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित की जाएगी, कृपया प्रतीक्षा।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पराशर, वाचन स्वर दीपा सिंह। शाजापुर जिले में किसान खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में लग गए हैं। जिले में हर साल करीब 3 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोई जाती है। किसान अब अच्छे मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। पर्याप्त बारिश होने पर अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ शुजालपुर और काला पीपल विकासखंड के किसानों के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के सिद्धांत, कम लागत में अधिक उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण की तकनीक की जानकारी दी। खेत बचाओ अभियान के तहत मृदा और जल संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा हुई। खेती की तैयारियों के बीच जिले के स्कूल भी बच्चों की चहल पहल से गुलजार हो गए हैं। स्कूल चले अभियान के तहत नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है। नए बस्ते, किताबें और कक्षाओं को लेकर बच्चों में उत्साह दिखाई दे रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के संदेश के साथ जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। शाजापुर में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। इसी क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 41 प्रतिभा बालिकाओं का सम्मान किया गया। उन्हें कुल 2,05,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। कलेक्टर ने बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स भी दिए। समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के बीच काला पीपल के बेरावल गांव में बावड़ी उत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने जल स्रोतों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सख्ती दिखाई है। होटल ढाबों और औद्योगिक इकाइयों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विकास के मोर्चे पर भी जिले के लिए अच्छी खबर है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होने से शाजापुर के 546 गाँव को फायदा मिलेगा। इससे निवेश, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी के तहत कलेक्टर ऋजु बापना ने ज्योति नगर में करीब 22 लाख रुपए की लागत से बने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण न होने पर कलेक्टर ने नगर पालिका इंजीनियर पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉक्टर कमला आर्य को समिति बनाकर जाँच करने और दोषी इंजीनियर से राशि वसूलने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ जिले में मुस्लिम समाज के मुहर्रम पर्व की शुरुआत हो गई है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सौहार्द और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। युवाओं और समाज को नशे से दूर रखने के लिए जिले में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मास्टर वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग ने बिना लाइसेंस काम करने वाले ठेकेदारों पर निगरानी बढ़ा दी है। सभी ठेकेदारों के लिए पंजीयन और लाइसेंस अनिवार्य बताया गया है। महिला और बाल विकास विभाग ने कुपोषण मुक्ति अभियान की समीक्षा की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार की गुणवत्ता की जाँच की गयी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मत्स्य विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए जिले में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिंहस्थ के समय उज्जैन और शाजापुर जिले में होने वाले धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है। अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में यातायात पुलिस ने यातायात मित्र फोर्स गठित करने

0: अभी आप सुन रहे थे शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पराशर का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं सुरेश

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं सुरेश वाडकर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये

आप सुन रहे हैं श्रोताओं, आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं सुरेश वाडकर। सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, अब समय हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाजार से, आवाज़ लता मंगेशकर की। गीत लिखा है मीर ताकी मीर ने और संगीत तैयार किया खय्याम साहब।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उमराव जान से। आवाज आशा भोसले की है और संगीत एक बार फिर खय्याम साहब।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म नूरी का ये गीत। गीत लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीत खयाम साहब।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म रजिया सुल्तान का ये गीत। गीत रचना कैफी आजमी की और संगीत खय्याम साहब।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दर्द का ये गीत। आवाज लता मंगेशकर की, नक्श लयालपुरी के, रचना और संगीत खयाम साहब।

और श्रोताओं अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म निकाह से, आवाज गुलाम अली की। और इस गीत को लिखा है हसरत मुहानी ने और संगीत गुलाम अली का। लीजिए सुनिए।

0: और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यही संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ मैं छाया पाठक, नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल है मैडम
1: जी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल, कौन बोल रहे हैं?
2: कालीचरण यादव।
1: कालीचरण यादव, फोन करें, गीत सुने में आपका स्वागत है। पसंद बताएं अपनी।
2: फिल्म का नाम है कुलदीप, फिल्म का गाना सुनना। मुझे पीने का शौक है, पीता हूं कम बढ़ाने।
1: मुझे
2: पीने का शौक है, कुलदीप अमिताभ बच्चन की पिक्चर है ना।
1: जी जी,
2: वही गाना सुनना, गाना पसंद है
1: जी। नमस्कार,
2: आप कौन बोल रही हैं?
1: छाया पाठक बोल रही हूँ।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, फोन करें, गीत सुने में आपका स्वागत है। नाम बताएं
1: नमस्कार बहन
0: अपना।
1: जी जी,
0: नमस्कार।
1: मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट राजेंद्र, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: सैनी जी, स्वागत है। बताएं क्या करते हैं आप।
1: जी मैं सिलाई करता हूँ और इस समय सिलाई कर रहा था, मशीन चला रहा था और नंबर भी उजाड़ करता जा रहा था, और यहाँ पे कॉल चालू हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पाया, फिर मैंने देखा अरे कॉल चालू है।
0: अच्छा जी,
1: जी
0: चलिए बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी आज आप सुनवा देना, सावन आया बादल छाए बुलबुल जय की फूल खिले, ये
0: अच्छा,
1: गीत है शायद साजन का घर, हाँ
0: साजन का घर
1: उस फिल्म का गीत
0: जी, बिल्कुल सुनवाएंगे, लेकिन सावन तो अभी आया नहीं है।
1: बस इंतजार है, उसकी इंतजार ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत
0: जी
1: तेज गर्मी पड़ रही है इस समय।
0: जी चलिए, कार्यक्रम में
1: और
0: फोन
1: एक
0: करने के लिए।
1: मेरी
0: हाँ।
1: रिक्वेस्ट है कार्यक्रम के बारे में, जो फोन वो का नाम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम चलता है, अगर उसमें लास्ट में जब जैसे कार्यक्रम समापन होता है और अगला विषय बता दिया जाए तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा, फिर बनेगा
0: सर होता क्या
1: कार्यक्रम।
0: है, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले अलग अलग होते हैं, तो अब किसी को विषय पहले से पता नहीं रहता कि सामने वाला क्या लेने वाला है विषय अगला, इसलिए नहीं बता पाते, और सभी लोग तब भी नहीं सुनते हैं, नए श्रोता भी जुड़ते हैं या उस समय नहीं लगाते हैं फोन, तो किसी को पता नहीं पड़ पाता, तो इसलिए उसी समय बताना रहता है। ठीक है,
1: ठीक,
0: चलिए, नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: खूबसूरत सी जिंदगी में खुशियाँ आपके चेहरे पर बरकरार रहे और मेरी दुआ है रब से कि आपको खुशियों का नहीं बल्कि खुशियों को आपका
1: इंतजार रहे। बहुत बढ़िया, आप नाम भी बता दें अपना।
0: हम आपके नियमित श्रोता बोल रहे हैं पालदा नाका इंदौर से, मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: मोहम्मद
0: रफी मंसूरी पालदा नाका इंदौर से
1: जी।
0: कैसे मैडम आप?
1: बस बढ़िया है, आप बताएं आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं मैडम।
1: अच्छा, तो आपका नाम जो है, तो आप मोहम्मद रफी के गाने पसंद करते हैं कि नहीं?
0: हाँ गाने पसंद है मैडम और बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं उनके हम।
1: जी, तो आज भी कुछ वही सुनना चाहेंगे?
0: जी मैडम, आप कौन बोल रहे हैं?
1: छाया पाठक बोल रही हूँ।
0: जी जी, फिल्म का नाम है सुहाग, ये
1: जी
0: कपूर और अमिताभ बच्चन वाली। इसमें गाना है बाबी परवीन बाबी और शशि कपूर का है, क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो।
1: मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो। जी बिल्कुल सुनवाती। चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार
0: जी। नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता
0: जी, स्वागत है
1: बेटा
0: कार्यक्रम में।
1: राजस्थान से। हाँ,
0: राजस्थान से बोल रहे हैं। अभी गर्मी कैसी है वहाँ?
1: बहुत गर्मी हो रही है अभी तो। हाँ,
0: गर्मी हो रही है जी। आप वहाँ पे क्या खेती किसानी करते हैं?
1: नहीं, खेती किसानी नहीं, हम जो सीनियर सिटीजन
0: अच्छा, सीनियर सिटीजन है
1: है।
0: जी। तो आज कार्यक्रम है, फोन करें, गीत सुने, तो आप क्या सुनेंगे
1: गाना बताऊं?
0: जी, बताएं।
1: ये सांझ और सवेरे का है क्या?
0: आप तो फरमाइश
1: ओ
0: रख दें।
1: सजना मेरे घर आना।
0: अच्छा जी
1: हम तो पुराने गाने भी सुनते हैं, लिस्ट बना रखी है बहुत पहले से। ठीक
0: जी सुनिएगा कल आप ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
1: है, धन्यवाद।

0: फोन करें, गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जसराम जाटव बोल लो मैडम, जवराई से जिला शिवपुरी।
0: जसराम जाटव
1: हाँ
0: जी, पहले भी आपसे बात हुई है कई बार?
1: हाँ मैडम बात हुई है। कौन कौन बोल रही मैडम तुम?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: हाँ मैडम आपसे बात मेरी हो गई।
0: जी, आज क्या पसंद है आपकी?
1: हमको मैडम सुनना है दिलवाले पिक्चर का गाना रहेगा मैडम।
0: दिलवाले का कौन सा?
1: जीता हूँ जिसके लिए मरता।
0: आप अक्सर यही गाना सुनते हैं और कोई फरमाइश नहीं है आपकी?
1: नहीं मैडम क्या वो मेरे को ये गाना अच्छा लगता है।
0: जी चलिए,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: मैडम।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेंगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश
0: जी। हाँ
1: जी, फादर डे की पूरी मध्य प्रदेश टीम को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: और बड़ी बहन आप बढ़िया हो
0: जी। बढ़िया है
1: जी। हम ग्राम छात्र तहसील उदयपुरा जिला रायसेन से भगत जी बैरागी बात कर रहे हैं और आपको कार्यक्रम हम आकाशवाणी जबलपुर से सुन रहे हैं।
0: आकाशवाणी जबलपुर से सुन रहे हैं। साफ सुनाई दे रहा है?
1: हाँ बिल्कुल, जबलपुर तो एकदम क्लियर सुनाई देता और वहाँ पे भी साफ क्लियर सुनाई देता मध्य प्रदेश
0: अच्छा, तो आप रोज सुनते हैं?
1: जी। हम प्रतिदिन सुनते हैं रेगुलर 11 बजे 3 बजे तक।
0: 11 बजे से 3 बजे तक शाम को नहीं सुनते?
1: हाँ, हम शाम को युववाणी सुना था, वापस 5:30 बजे तक मध्य प्रदेश को प्रसारण सुनाई देता जबलपुर पर
0: जी। चलिए अब फिर गीत भी बता दीजिए, आज क्या सुनेंगे?
1: जी। फिल्म को नाम है बीवी नंबर वन और गाना के बोल है मुझे माफ करना ओम साई राम
0: बिल्कुल सुनाएंगे आपको।
1: जी।
0: फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रधान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी,
1: और सबसे पहले आपको योग दिवस की ढेर ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी मैडम,
0: क्या कर रहे थे इस समय?
1: आज मेरा मैडम ड्यूटी नहीं था, घर पे था, नहा धो के वही घर का काम कर रहा था। कई केंद्रों में फोन किया, रिकॉर्डिंग में जुड़ा और प्रसारण भी सुन रहा था, लाइट भी लगा और केंद्र में भी रिकॉर्डिंग में जुड़ा
0: जी
1: हूँ। आकाशवाणी भोपाल में
0: जी जी
1: बातचीत हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है और फोन लगा, अच्छा लगा। मौसम बेहाल है,
0: मौसम
1: परसों पानी गिरा था,
0: बेहाल है कि
1: बादल
0: अच्छा है
1: किया, आज
0: मौसम?
1: आज धूप किया है, बादल का नामो निशान नहीं है,
0: अच्छा, आज
1: इस
0: धूप
1: तरह उलट
0: निकली।
1: पुलट मौसम हो रहा है।
0: चलिए कोई बात नहीं, आज धूप है तो कल छाया मिलेगी। बताएं क्या सुनेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है हादसा और गीत के बोल है योगा योगा, गायक अमित कुमार। ये गीत है मैडम।
0: जी जी जी

0: मैं महर्षियों का चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
1: महाराज?
0: Yes.
1: योगी?
0: That's right.
1: Welcome.
0: Thank you.
1: Welcome.

0: जी हेलो, आकाशवाणी फोन का जी सुन करके हूँ
1: जी।
0: जी मैं मछेरा कला जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, पवन विश्वकर्मा।
1: पवन विश्वकर्मा
0: जी
1: जी, वहाँ पे क्या आपका व्यवसाय है, कारोबार है, दुकान है, खेती है, क्या करते हैं?
0: जी दीदी, हमें खेती है, किसानी करते हैं।
1: खेती किसानी करते हैं। तो अभी क्या बोया, धान?
0: जी दीदी, अब धान।
1: अच्छा, तो पानी वानी आ रहा है बराबर?
0: जी जी नलकूप है।
1: अच्छा, नलकूप से। बाकी बारिश का पानी?
0: जी बारिश हो रही, जब वो धान लगेगी बनिए भरा जाएंगी जब लगेगी धान।
1: अच्छा, अभी धान बोई नहीं है। बताएं आज कार्यक्रम में आपकी पसंद कौन सी है?
0: जी आज हमको सुनना है, हमें नहीं प्यार किया है, मुबारक हो तुमको ये सारी तुम्हारी।
1: जी
0: मेरा फोन दे रही, 4 महीने बाद लगा मेरा।
1: अच्छा, ने प्रयास नहीं किया?
0: जी
1: प्रयास
0: हर दिन करता था, लगती नहीं थी कॉल।
1: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, आप इतने समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब आपका कॉल लग गया। इसी तरह पर प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी कॉल लगता ही है ना। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना,
1: अनोखे सिंह
0: कहाँ से?
1: जिला धार
0: धार से। पसंद बताएं अपनी
1: पर्सन। राम जी की लीला है निहारी
0: फिल्म कौन सी है?
1: सर। ये फिल्म का तो नहीं, बाकी ये बहुत अच्छा गाना है, आ सकता है।
0: सुनवाते हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद सर जी।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हाथेगांव से बोल रहा था, गोविंद जलोटिया।
0: गोविंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी बताएं, कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया है सर, पानी की रास्ता देख रहे
0: पानी का रास्ता देख रहे हैं आप? क्या सभी
1: हैं।
0: देख रहे हैं, हम सभी को इंतजार है पानी का। एक झलक दिखलाता है कभी और एकदम से चला जाता है ना चलिए तो पानी आप क्या है, बिल्कुल बरसा भी नहीं क्या?
1: नहीं, पानी छीटे छाटे आके रह जाते हैं।
0: हाँ ये बात सही है। तो आज क्या धूप निकली है?
1: हाँ
0: ऐसा ही है इंतजार। खैर ये भी कहते हैं
1: हाँ
0: इंतजार
1: जो
0: का
1: इंतजार में
0: फल
1: है
0: मीठा
1: वो
0: होता है।
1: मिलने में नहीं है फिर।
0: जी अब देखिए इस बार किस तरह से बारिश होती है, कितनी होती है बताएं
1: सर ये
0: कौन।
1: गाना था सर, वो जो है बहुत दिन से मतलब अटका हुआ है, बेजू बावरा का है सर, तू गंगा की मौज जमुना की धारा।
0: जी, तू गंगा की मौज में जमुना की धारा। जी सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम यही समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति छाया पाठक की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ ही उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने संस्कृत श्लोक साझा करते हुए कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि गरीबों, युवाओं और महिलाओं तथा किसानों के अटूट विश्वास से मध्यप्रदेश सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारी सरकार अग्रणी मध्यप्रदेश की भावना के साथ हर वर्ग के कल्याण हेतु कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना के विमोचन के साथ ही शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की 15 सदस्यीय एक दिवसीय टीम की घोषणा कर दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं और ये समय है

आपके पसंद के गीतों से सजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। तो कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं अग्नि साक्षी के इस गीत के साथ, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का है और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म अग्नि साक्षी का ये गीत।

नगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर, सरिता गुहाड़कर, सिद्धांत गुहाड़कर, प्रिंस एकांश गुहाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गुहाड़कर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मन का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। बोल समीर के हैं, संगीत संजीव दर्शन का। लीजिए सुनिए।

कृष्णा। इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक की आवाज में। बोल आनंदराज आनंद के हैं और संगीत है अनु मलिक का। फरमाइश करता है आप सभी सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। आप सभी ने सुनना चाहा है आनंद बख्शी का लिखा कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजाया हुआ गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और मनहर उदास ने, और फिल्म का नाम है त्रिदेव।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म इश्क से। आवाज़ें कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की हैं। गीत लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीतबद्ध किया है अन्नू मलिक ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। साथ ही सुना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने।

0: पिछली कड़ियों में आपने सुना कि धारा नगरी के महाराज द्युम्नसेन ने राजकुमार विजयश्रवा को प्यार करने के कारण नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजमाता ने ताने कसे तो राजकुमार राजमहल छोड़कर चल पड़ा। उसे पता चला कि भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, सो इंद्रप्रस्थ पहुंचकर यमुना तट पर एक आश्रम में ठहर गया। उसने खुद को धारा नगरी का एक श्रेष्ठ बताया ताकि वो कहाँ है ये राज परिवार को पता न चले। अब इसे संयोगी समझिए कि इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन ने ही भुवन मोहिनी को आश्रय दे रखा था। राजा आदित्य सेन अपनी बहुत ही सुंदर पुत्री चंद्रहासिनी के लिए उपयुक्त वर की खोज में थे ही। उन्हें पता चला कि यमुना तट पर उनके आश्रम में एक श्रेष्ठी ठहरा हुआ है जो दिखने में श्रेष्ठी नहीं बल्कि कोई राजवंशी लगता है। उन्होंने पता लगाने के लिए नर्तकी भुवन मोहिनी को कहा। चंद्रहासिनी को राग दीपक रागिनी सिद्ध करने आश्रम जाना ही था। भुवन मोहिनी तो उसकी गुरु ही थी। दोनों वहां गए और जान गए कि वो आगंतुक विजय श्रवा ही है। चंद्रहासिनी का गायन सुनकर राजकुमार उस पर मुग्ध हो गया। जब दोनों रथ पर लौट रही थी तो राजकुमार ने दोनों को देखा भी। अब आगे की कथा सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की चौथी कड़ी में।
1: महाराज आदित्य सेन की जय हो। महाराज, नर्तकी भुवन मोहिनी आपके दर्शन चाहती हैं।
2: उसे अंदर ले आओ।
3: महाराज को प्रणाम।
2: कुछ पता लगा भुवन मोहिनी? राजोद्यान में ठहरने वाला युवक धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठ का पुत्र है या सम्राट द्युम्नसेन के उत्तराधिकारी, भारत के भावी सम्राट?
3: यही सत्य है महाराज, वो राजकुमार विजय श्रवा ही है।
2: अच्छा,
3: और आपको प्रसन्नता होगी ये जानकर कि ये सत्य राजकुमारी चंद्रहासिनी भी जान गई हैं।
2: राजकुमारी को कैसे ज्ञात हुआ?
3: उनके पास राजकुमार विजय श्रवा का चित्र पहले से ही है। वे चित्र के साथ मिलाकर पहचान गईं कि वो युवक वास्तव में राजकुमार ही हैं।
2: नर्तकी, आज तुमने मुझे वांछित प्रसन्नता दी है। ये लो तुम्हारा पुरस्कार।
3: धन्यवाद महाराज।
2: भावी सम्राट के सम्मान में समस्त राजकार्य स्थगित किए जाते हैं और इंद्रप्रस्थ में सर्वत्र महोत्सव मनाया जाएगा। नर्तकी।
3: आज्ञा महाराज।
2: तुम्हारे लिए आदेश है कि महोत्सव में तुम हमारे द्वारा दिए गए इन्हीं आभूषणों को धारण करके अपने नृत्य और संगीत से राजकुमार विजयश्रवा और सारे सभासदों का मनोरंजन करोगी।
3: आदेश शिरोधारी है महाराज।
4: युवराज, युवराज, युवराज, तनिक बताइए तो परिसर

0: कौन आ रहा है आपसे मिलने?
1: भुवन मोहिनी।
0: भगवान करे इसका मिलन इस परिसर में तो क्या इस जन्म में भी आपसे ना हो।
1: कौन आ रहा है मित्र?
0: अरे मित्र, आपसे मिलने स्वयं महाराज आदित्य सेन आ रहे हैं।
1: महाराज आदित्य सेन कहाँ है?
0: वो देखिए।
1: महाराज आदित्य सेन को सादर प्रणाम।
2: प्रणाम राजकुमार विजय श्रवा। निश्चित ही आप अत्यंत गोपनीय विधि से यहाँ पर रुके थे, परंतु हमें ज्ञात हो गया। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप अब हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए।
1: हमें स्वीकार है महाराज।
2: आभारी हूँ युवराज। भारत के भावी सम्राट के सम्मान में इंद्रप्रस्थ नगरी में महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर आप अपने समस्त साथियों सहित सादर आमंत्रित हैं।
0: मित्र, आमंत्रण स्वीकार करिए।
1: आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है महाराज।
2: आइए राजकुमार, आपका आसन ये है।
1: धन्यवाद महाराज।
0: सारथ।
3: हाँ रण्यक।
0: कुछ समझ रहे हो?
3: अवश्य रण्यक। महाराज आदित्य सेन हमारे राजकुमार को अपना पाहुन बनाना चाह रहे हैं।
0: तात्पर्य ये कि हमने जो सोचा था सब कुछ उसके अनुरूप ही हो रहा है।
3: वो कैसे?
0: अरे युवराज का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी जैसी अपूर्व सुंदरी से हो रहा है, तो फिर वो भला उस नर्तकी के मोह में क्यों पड़ेंगे?
3: ये तुमने ठीक कहा।
0: अब तो भगवान से बस इतनी विनती है कि बस कुछ दिन और भुवन मोहिनी को दूर रखें हमारे राजकुमार से।
4: शांत शांत, कृपया शांत रहें। महाराज आदित्य सेन और हमारे माननीय अतिथि राजकुमार विजय शर्मा महोत्सव स्थल पर पधार कर अपने अपने आसनों को ग्रहण कर चुके हैं और अब प्रस्तुत हैं राजकुमार के स्वागत में अद्भुत नृत्य और संगीत। महाराज आपके आदेश की प्रतीक्षा है।
2: आदेश है, कार्यक्रम आरंभ किया जाए।

0: वाह वाह अरण्यक, नर्तकी की पदगतियों और अनावृत हाथों से लगता है कि वो अत्यंत ही सुंदर है, परंतु मुखड़े पर घूंघट व्यवधान बन रहा है।
1: चिंता न करो, वो आगे आकर महाराज और राजकुमार को प्रणाम करेगी और फिर अपने चेहरे से घूंघट उठाएगी।
0: अरे हाँ, तुमने सही कहा, अब वो घूंघट उठा रही है।
1: ये कहीं भुवन मोहिनी तो नहीं?
0: क्या कह रहे हो, तब तो अनर्थ हो जाएगा।
1: अरे ये तो वही है,
0: भुवन मोहिनी।
1: हाँ
0: तो फिर उठो।
1: क्यों?
0: युवराज को यहाँ से दूर ले चलें।
1: अरे अब ये प्रकरण हमारे हाथ से निकल चुका है।
0: अच्छा तो फिर देखो कि युवराज की प्रतिक्रिया क्या है।
1: लगता है युवराज ने भुवन मोहिनी को पहचाना ही नहीं।
0: ऐसा कैसे हो सकता है।

कितना सुंदर स्वर है, कहीं ये भुवन मोहिनी तो नहीं? ओह, ये तो मेरी मेरी प्राण प्रिया ही है।

0: कितनी विडंबना है कि ऐसे समय में जब मेरी प्राणेश्वरी गीत के माध्यम से अपनी असह्य पीड़ा मुझे सुना रही है, मुझे अपने पास बुलाने का प्रयत्न कर रही है, उस समय मैं राजसी बंधनों में जकड़ा हुआ हूं।
1: कितनी पीड़ा है सखी भुवन मोहिनी के स्वर में। मैं देख रही हूँ कि राजकुमार विजयश्रवा भुवन मोहिनी की पीड़ा से कितने एकरस हो चुके हैं। मानो मानो ये उन्हीं के लिए गाया जा रहा हो।
2: वाह, तुम्हें धन्यवाद है भुवन मोहिनी, तुम अपने संगीत नृत्य से राजकुमार का हृदय जीत रही हो। अवश्य ही मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, परंतु मैं देख रहा हूँ कि राजकुमार भुवन मोहिनी की ओर वैसे ही खींचे जा रहे हैं जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचता है। भय लग रहा है कहीं भुवन मोहिनी की कला पर राजकुमार कुछ अधिक ही मोहित न हो जाए।
0: भुवन मोहिनी, अर्धरात्रि की इस निस्तब्ध वेला में हृदय को चीर देने वाली तुम्हारी ये विहाग रागनी ऐसे लग रही है मानो कोई देवकन्या शाप वशात स्वर्ग भ्रष्ट होकर अपने जीवन की करुण गाथा सुना रही हो। अब मैं अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर सकता, नहीं देख सकता अपने जीवन दाहिनी को इस प्रकार अश्रु निर्झर करते।
2: क्या हुआ युवराज, आप चल दिए?
0: महाराज, चौथा प्रहर होने को है, अब विश्राम चाहता हूँ।
2: नृत्य रोक दिया जाए।
3: महोत्सव संपन्न हुआ, माननीय अतिथि अब विश्राम हेतु जा रहे हैं, सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने गृह की ओर प्रस्थान करें।
4: कितना सुंदर गायन हुआ भुवन मोहिनी का। राजकुमारी, ये है आपका रथ, इधर आइए।
1: राजकुमार का रथ कहाँ है?
4: ठीक आपके पीछे।
0: अरण्यक?
5: हाँ मित्र,
0: तुम मेरे साथ ही रहना।
5: साथ ही हूँ मित्र, और राजकुमारी जी भी साथ ही हैं।
0: साथ ही हैं?
5: हाँ।
0: कहाँ?
5: अरे वो आगे आगे उन्हीं का रथ जा रहा है।
4: सुनो सारथी, रथ को बहुत तीव्र मत भगाना।
1: तुमने ऐसा क्यों कहा सारथ से?
4: ताकि आपका और आपके राजकुमार जी का रथ साथ साथ चले।
5: क्या सोच रहे हैं मित्र?
0: अरे ये पुष्पहार कहाँ से आ पड़ा मेरे गले में?
5: पुष्पहार? अरे हाँ, संभवतः ये लीला आगे वाले रथ से कराई गई है।
4: राजकुमारी जी, देखिए तो, एक चंद्रदेव ऊपर आकाश में हास कर रहे हैं और एक दूसरे चंद्रदेव पीछे रथ से आपका पीछा कर रहे हैं। तनिक देखिए तो पीछे मुड़कर।
1: अरे उनके गले में तो वही पुष्पमाला है जो मैंने पहन रखी थी, वो वहाँ कैसे पहुँच गई?
4: मैंने फेंकी थी, ठीक उनके गले में जाकर पड़ी। राजकुमार जी, राजकुमारी जी कह रही हैं कि ये उनके पूजा के पुष्प हैं, आप स्वीकार करेंगे ना?
5: अरे मित्र, उत्तर दीजिए ना।
0: मैं क्या बोलूं मित्र, मेरी स्थिति तो दो नावों पर सवार व्यक्ति जैसी है।
5: तात्पर्य?
0: एक ओर मेरी प्रिया भुवन मोहिनी और दूसरी ओर अनुपम सुंदरी राजकुमारी जो मन ही मन मेरा वरण कर चुकी है।
5: अरे मित्र, ये बाद में सोचना, पहले उस दासी के प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। अरे देवी जी, राजकुमारी जी से कहिए कि राजकुमार जी को उनका पुष्प स्वीकार है।
4: धन्यवाद, बहुत सोच कर उत्तर दिया, चलो फिर भी मान लेते हैं। अब कृपा करके उनसे ये

0: कीजिए कि भूले नहीं, ऊपर चंद्रदेव उनके इस कथन के साक्षी हैं।
1: अरे देवी जी, आप चिंता न करिए, ऊपर चंद्रदेव हैं, नीचे मैं भी हूँ।
2: क्या कह रहे हो मित्र?
1: अरे मैं तो साक्षी की बात कर रहा था।
3: अनुकूल समय आने दो सखी, फिर स्मरण कराने की आवश्यकता ही न रह जाएगी।
0: अरे अरे, अनर्थ हो गया, सारथी रथ रोको।
4: क्या हुआ?
1: अरे मित्र, राजकुमारी का रथ रुक गया। और ये लो, अपना भी सारथी अत्यंत निपुण है, दोनों ही रथ रुक गए हैं। अब आप नीचे उतरिए।
3: क्या हुआ सखी, रथ को क्यों रुकवा दिया?
0: आपकी मणिमाला खो गई।
3: क्या? अरे अभी तो मैंने अपने गले से उतार कर तुझे रखने के लिए दिया था, तूने पेटी में क्यों नहीं रखा था? कहीं मार्ग में तो नहीं गिरा दिया?
0: कह नहीं सकती।
3: तो फिर रथ वापस लौटाओ और पीछे जाकर खोज करो।
2: अर्णक, हाँ क्या हुआ?
1: आज्ञा दीजिए मित्र, अभी पता लगाता हूँ।
2: चलो मैं भी चलता हूँ।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
0: यही देखिए ना, यहीं पे तो यहीं पे हो सकती है।
1: हम जान सकते हैं कि रथ क्यों रुक गया यहाँ पर?
0: राजकुमारी जी की मणिमाला खो गई है।
1: अरे किससे खो गई?
0: मुझसे।
1: ये तो होना ही था।
0: क्या मतलब?
1: अरे जिस राजकुमारी की सखी आप जैसी हो तो मणिमाला को तो खोना ही था।
0: अरे मुझ पर आरोप लगाने वाले आप कौन हैं?
1: मैं राजकुमार विजय शर्मा जी का बाल सखा हूँ अरण्यक, इसलिए अनुभव से कह रहा हूँ। और देवी जी, आप कौन हैं?
0: मैं भी कम अनुभवी नहीं हूँ।
1: वो तो लग ही रहा है।
0: मैं राजकुमारी जी की सबसे प्रिय सखी हूँ।
1: अच्छा?
0: हाँ।
2: अरण्यक, चलो मणिमाला को खोजने में सहायता करें।
0: आप युवराज, जब आप सहायता करेंगे तो मिल जाने में कोई संदेह ही नहीं है।
2: किधर गिरी होगी?
0: राजकुमार, वो उधर दूर उस तरफ।
1: ओ, राजकुमार जी तो मणिमाला खोजने में लग गए, अब हम दोनों सखा सखी को क्या करना होगा?
0: ढूंढते ढूंढते कहीं दूर से सब देखना होगा।
1: अच्छा, तो फिर आओ।
0: हाय, राजकुमार जी मेरी सखी के समीप जा रहे हैं।
1: दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं।
0: हमारी लाडो लजा रही हैं।
1: और मेरे सखा और पास आ रहे हैं।
0: आगे कुछ मत बोलो।
1: लो, चुप हो गया।
0: ऊपर चंद्रदेव को निहारो।
1: ये लो।
2: आह, चंद्रहासिनी, अद्भुत सौंदर्य है तुम्हारा।
3: ये रूप का देवता जो मेरे सामने खड़ा है, न जाने कितनी नारियों का महान आकर्षण बना होगा, न जाने कितनी चंद्रमुखी नारियां इसके प्रेम से निराश होकर या तो इसे अभिशाप दे रही होंगी या दर्द भरी टीस लिए हृदय के टूटने का परिणाम भुगत रही होंगी।
2: चंद्रहासिनी, तुम्हारी ये गुथी हुई केश राशियां जो त्रिविध समीर के झोंके खा खा कर नाच पिलाई हुई नागिन की तरह लोचे खा रही हैं, तुम्हारी हल्की बासंती रेशमी साड़ी सुरभित द्रव्यों के मद को वायुमंडल में बिखेरती हुई मेरी सुप्त रति भावना को जागृत कर रही है।
3: ओह, मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रही हूँ, परंतु मैं जानती हूँ कि पुरुष सौंदर्य मद में आकर अनेक कोमल प्रसून हृदयों समर्पित नारियों के सर्वस्व समर्पण को ठुकरा देता है। यदि ऐसे पुरुष के समर्पित अभिलाषाओं पर मैं प्रहार करूं तो?
0: आई!
1: क्या हुआ?
0: मेरी सखी तो हमारी ओर आ रही है।
1: अच्छा,
0: आओ यहीं विशाल शिला के पीछे छुप जाएं।
1: अरे रुको, तो मेरे सखा उनसे कुछ कह रहे हैं।
2: इंद्रप्रस्थ नगर की राजपुत्री को धारा नगरी के युवराज का अभिवादन स्वीकार करना होगा, ये तो आमंत्रित अतिथि का सबसे बड़ा अपमान है। राजकुमारी, अभिवादन स्वीकार हो।
3: प्रणाम राजकुमार।
2: हमारी ये अमूल्य एकांत घड़ियां वरदायिनी सिद्ध हूं।
3: कुछ कहा आपने?
2: नहीं तो।
3: भाभी सम्राट, हम क्षमा चाहते हैं आपसे।
2: क्यों, किस लिए राजकुमारी? मुझे तो अपराध का ज्ञान ही नहीं, फिर क्षमा कैसे? नहीं बताएंगी? चलिए अपने मणिमाल के विषय में ही बताइए। कब और कहां गिरा था और कैसे?
3: मुझे स्वयं कुछ ज्ञात नहीं है देव। वो तो मेरी सखी थी जिसने खो जाने की चर्चा चलाई।
2: क्या मैं जान सकता हूँ कि उस निर्जीव मणिमाला से क्या अपराध हो गया था कि राजकुमारी ने उसे अपने हृदय से दूर किया?
3: देव, इसमें मेरा नहीं, मेरी सखी का हठ था। उसे निकाह था।
2: क्या?
3: जो अपने हृदय स्थल को इन मणियों की माला से सजाएगा वो प्रत्येक नेत्र की प्रिय अतिथि बनेगी और साम्राज्ञी भी।
2: चंद्रहासिनी,
3: क्या भाभी सम्राट मुझ पर सदैव होकर मुझे एक दो प्रश्न करने का अधिकार देंगे?
2: अवश्य राजकुमारी।
3: मुझे भय है कि मेरा प्रश्न कहीं भाभी सम्राट को ना रुचे और मुझे कोप भाजन बनना पड़े।
2: नहीं नहीं, शंकाओं का समाधान आवश्यक है।
3: तो फिर कहती हूँ, मुझे संदेह है कि आज की राजसभा में भाभी सम्राट को मनोरंजन के स्थान पर मनोवेदना प्राप्त हुई है।
2: वो कैसे राजकुमारी?
3: स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि कैसे भुवन मोहिनी संगीत लहरियों में अतीत के वेदनापूर्ण संस्मरणों को भावात्मक ढंग से व्यक्त कर रही थी और कैसे उस पर आपकी भावभंगिमाएं मानो किसी प्रच्छन्न प्रेम कथा को प्रकट कर रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन सी भाग्यशालिनी रमणी है जिसने भारत के भाभी सम्राट के हृदय पर वियोग, तीस और जलन के बीच बोए हैं? यदि मेरे प्रश्न ने भाभी सम्राट को विचलित कर दिया हो तो मैं क्षमा याचना करते हुए अपना प्रश्न लौटा लेती हूँ।
2: नहीं राजकुमारी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। प्रत्येक नर नारी के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य उपस्थित होता है जब वो अपना सर्वस्व एक दूसरे के लिए समर्पित करते हैं। किंतु राजकुमारी, प्रेम की गोपनीयता में जो शांति और संतोष है वो उसके प्रकाशन में नहीं। प्रकाशन करने में तो प्रेम तुच्छ और स्वार्थपूर्ण हो जाता है। इस प्रथम परिचय में ही अपने जीवन के गोपनीय तथ्यों को कैसे प्रकट करूं? राजकुमारी, आज की रात कितनी रम्य और परस्पर परिचय की मधुर भावना से कितनी सलोनी प्रतीत हो रही है। गिनती किए थोड़े से क्षण मेरे जीवन में अमूल्य संस्मरणों के प्रतीक बनेंगे जिन्हें भुलाया ना जा सकेगा।
3: यही तो मैं भी सोचती हूँ, किंतु।
2: किंतु क्या?
3: यही कि पुरुष मधुर हृदय न जाने कितने बार ऐसे मधुर मिलनों को भूलते हुए पाए गए हैं।
2: यह तो अपवाद मात्र है राजकुमारी, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं। ज्ञात होता है कि राजकुमारी का वो मूल्यवान हृदय हार सचमुच खो गया है, क्योंकि आपकी सखी और मेरे सखा दोनों ही उसे ढूंढते हुए न जाने कहां चले गए।
3: हाँ भाभी सम्राट, वो हृदय हार मेरे लिए सचमुच में अमूल्य है और कोई भी अमूल्य वस्तु एक बार खो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होती।
2: चंद्रहासिनी, ये मेरा हृदय हार तुम ग्रहण करो।
3: ये क्या, आपने अपनी मणिजड़ित माला मुझे पहना दी? इसके बदले क्या मैं कुछ दे सकती हूँ? अपना हाथ इधर देने की कृपा करेंगे क्या?
2: क्यों,
3: ये मेरी ओर से प्रेमोपहार।
2: अंगूठी?

0: भुवन मोहिनी। इसकी चौथी कड़ी का प्रसारण अभी आपने सुना संग्रहालय से के अंतर्गत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:58 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। राष्ट्रपति आज अपना 5 दिवसीय प्रदेश दौरा समाप्त कर श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ ही उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने संस्कृत श्लोक साझा करते हुए कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ मुर्गन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ मुर्गन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के अटूट विश्वास से प्रदेश सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारी सरकार अग्रणी मध्य प्रदेश की भावना के साथ हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। समारोह में अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना के विमोचन के साथ ही शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के कुछ जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनुराधा पिंड से। श्रोताओं, आजकल डिजिटल युग है, तो स्वास्थ्य सेवा भी डिजिटल क्यों ना हो। हम सभी को जरूरत पड़ने पर डिजिटल हेल्थ सर्विस का लाभ उठाना चाहिए। ये एक ऐसी सेवा है जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य तकनीकी उपकरणों की मदद से घर बैठे या आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। टेलीमेडिसिन और टेलीहेल्थ के माध्यम से घर बैठे वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं या सलाह ले सकते हैं, और मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल से डॉक्टर के पर्चे को अपलोड कर घर बैठे दवाइयां भी मंगवा सकते हैं। वहीं स्मार्टफोन ऐप्स, स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर हमारे रोजाना चले गए कदमों, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और हमारी नींद का पूरा रिकॉर्ड हमें देती है, जिसके जरिए हम वक्त रहते समझ सकते हैं कि हमारी सेहत का मीटर ठीक चल रहा है या नहीं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा भी हम सभी के लिए उपलब्ध है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA, या इसे आभा नंबर भी कहते हैं। जिस तरह हम बैंक लॉकर में अपने कीमती सामान को रखते हैं, उसी तरह आपके स्वास्थ्य से संबंधी सभी रिपोर्ट्स, डॉक्टर के पर्चे डिजिटल हेल्थ लॉकर में रहते हैं, यानी कि पूरा लेखा जोखा कंप्यूटर पर सुरक्षित रहता है। तो आपको अस्पतालों के पर्चों को लेकर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, बस आपको 14 अंकीय पहचान की जरूरत है, जिसे देश भर में किसी भी अस्पताल में बताने पर आपको आपके स्वास्थ्य की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। आप ये खाता आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर बना सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप पर आभा डाउनलोड करके भी अकाउंट बनाया जा सकता है। ये खाता न सिर्फ स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है, बल्कि कागज पत्री रखने की जरूरत को भी कम करता है। लेकिन हम आपके आनंद में कोई कमी आने नहीं देंगे। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: श्रोताओं, बारिश की दस्तक हो चुकी है और ऐसे में कई बार बच्चों को बड़ी दिक्कत होने लगती है। खास तौर पे देखा जाता है कि कभी सर्दी, जुखाम, फिर कभी कह रहे हैं कि पेट दुख रहा है। तो इन सब मौसमी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पंकज जायसवाल जी। आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बाल्यावस्था की सामान्य समस्याएं और होम्योपैथिक चिकित्सा। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि होम्यो चिकित्सा पद्धति क्या है और किस तरह से इलाज किया जा सकता है।
1: होम्योपैथी छोटी बीमारियों के लिए नहीं है, ऐसा जो सोचते हैं कि केवल सर्दी, जुखाम या मीठी गोलियां हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े से हमारे मानसिक बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या डाइजेशन की कोई भी समस्या, किसी भी स्किन की समस्या, महिलाओं की समस्या, सभी पर बहुत ही अच्छा जो है इसका योगदान भी है और उपचार भी है।
0: ज्यादातर अभिभावक बच्चों को कोई समस्या होते ही अन्य किसी पद्धति में चले जाते हैं, तो क्या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बच्चों के लिए सुरक्षित है?
1: बिल्कुल सुरक्षित है। किसी भी तरीके से, किसी भी अवस्था में होम्योपैथी का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों को लेकर के गार्जियन उनके प्रति प्रेम रहता है, अपने आप को ये मान लेता है कि नहीं, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। तो हम इस बात में कहेंगे कि होम्योपैथी का जो उपयोग है, जो दवाइयों का जो चुनाव किया जाता है, जो आपके लक्षण के आधार पर उसका चुनाव होता है, सर्दी, खांसी, निमोनिया, जैसे बारिश के समय में क्या लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी, जुखाम, गले में प्रॉब्लम आ जाता है, या उसको बहुत तेजी से फीवर आ जाता है, निमोनिया की दिक्कत हो जाती है, तो बच्चों को उसको होम्योपैथी प्रथम दृष्टया में लोगों को दिखाना चाहिए। अगर इमरजेंसी कोई बचती है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हम वहाँ पर किसी भी विषय में ये बात नहीं कहता हूँ कि हमें उनका सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारा ये सोचना है कि ज़्यादा भारी दवाइयों को एक बार में बच्चों को देने से पहले होम्योपैथी का जरूर सहारा लेना चाहिए।
0: सामान्य तौर पर बच्चों में किस तरह की समस्याएं हैं जो देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं, और होम्योपैथी इसमें कितनी कारगर रहती है?
1: सामान्य तरह से अभी जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, हर मौसमी बीमारियां होती हैं, बारिश का मौसम में संक्रमण ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय बारिश के समय में बहुत सारे हमारे जीवाणु हैं, फंगस हैं, ये हमारे गंदगी की वजह से घरों में और किसी भी तरीके से काफ़ी नमी की वजह से हमारे शरीर में उनका उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हम जो है रोकथाम चाहते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा हमारी जरूरी है। जरूरी किस तरीके से है कि बारिश का मौसम है, बचें, शाम के समय भीगते हुए आए और पंखे के नीचे सो गए, सर्दी हो जाता है, सर अगर ठंडा हुआ, सर अगर हमारा किसी तरीके से नमी बनी रही, तो वो हमें गले को, वायरल को लेकर के बहुत तेजी से संक्रमण फैल जाता है। तो बच्चों को बारिश में भीगना हम मना नहीं करते, भीगना चाहिए, लेकिन बच्चों के शरीर से जो पानी रहता है उसको तावल से अच्छे से साफ करके, सोते समय हल्का सा कुनकुना सरसों का तेल है उसको बॉडी के हर पार्ट में उसको थोड़ा सा मालिश करना चाहिए, लगाना चाहिए, हल्के कपड़े पहनना चाहिए। तो रोकथाम में कुछ होम्योपैथी की जैसे दवाइयां शुरुआती दौर में गले में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी जुकाम की आशंका लग रही है या बुखार आने का

0: मुझे लग रहा शरीर में टूटन आ रहा है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ दो दवाइयों का बहुत अच्छा जो है उसका परिणाम है, जैसे आर्सेनिक है और मर्कसॉल, इनको दवाइयों को जरूर दे देना चाहिए, एक ही डोज में या दो डोज में ही उसका असर आ जाता है।
1: जी, जैसे आपने बताया कि बरसात में बच्चों में संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो बच्चों में हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, मैंने अभी जो दवा का जिक्र किया मैंने आर्सेनिक एक अपने में इतनी बड़ी दवा है कि अगर हमने उसको सुबह खाली पेट 3 दिन दवा दे दिया तो बारिश के मौसम में जितने फंगल इन्फेक्शन होते हैं, खाने में कुछ दिक्कत आ जाती है तो फूड पॉइजनिंग की दिक्कत आ जाती है, बारिश में भीग गए तो लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, या किसी भी तरीके से कुछ भी अगर उसमें बात आती है, तो आर्सेनिक अपने में पूरी दवाई है।
1: जी,
0: 3 डोज उसको सुबह खाली पेट 3 दिन ले ले। लेकिन अगर उस प्रतिरोधक दवाइयों के बाद किसी भी तरीके से अगर वो भारी समस्या में या उसका जो रोग है वो बढ़ रहा है तो जरूर डॉक्टर से परामर्श ले।
1: तो ये कितने समय तक लेना चाहिए और कितने समय तक लेने के बाद इसे बंद कर देना चाहिए?
0: आर्सेनिक दवाइयाँ सिंगल डोज है 200 पावर में 3 दिन लेना चाहिए, खाली पेट सुबह 3 दिन, 2 से 3 महीने के बाद फिर से रिपीट कर ले। घर के सभी सदस्य ले सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
1: आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि और किस तरह के उपाय हो सकते हैं जिनसे बच्चों को बार बार बीमार पड़ने से बचाया जा सके।
0: ये बात करूंगा मैं मोबाइल के बारे में। बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, चक्कर आ रहा है, कोई भी टेस्ट कराने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है। अभिभावक से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को मोबाइल में क्या चीजें उनके लिए जरूरी है उन पे निगरानी रखें और कितना समय दें। सुबह का नाश्ता सबसे पहली ड्यूटी है कि सुबह उठाना, उसको योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, जैसा हम सिखाएंगे बच्चा वैसे बनेगा।
1: होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में क्या खाने पीने का भी कोई परहेज रहता है?
0: बीमारियां किस तरीके की है, जैसे अब डाइजेशन की कोई बीमारियां है, दस्त का पेशेंट आ गया तो हम दस्त में थोड़ी कहेंगे कि कुछ चीज खाना है, तो दस्त के हिसाब से जो मूंग की खिचड़ी खाने को डॉक्टर बोलता है उसके पीछे रीजन होता है। मूंग और चावल जो पका करके जब बनाते हैं तो उसमें एक श्लेष्म बनता है जिससे हमारे आंतों को पचाने में सुपाच्य होता है और वो दस्त को रोकता भी है। तो जो बीमारियां जिस तरीके की रहती हैं उसमें रोकथाम खाने का जरूर रहता है, हर बीमारियों में नहीं रहता है। होम्योपैथी में ये बात जरूर करते हैं कि भाई होम्योपैथी में तो ये नहीं खाना, कच्चा लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये समाज में एक होम्योपैथी के प्रति एक धारणा है कि यार बड़ा वहाँ पर परहेज बताया जाता है। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है ये अपने में इतनी मजबूत है कि इसमें वो छोटे छोटे खानों की चीजों से वो उसकी बीमारियों की जो क्षमता है ठीक करने की वो कमजोर नहीं पड़ती है, बशर्ते हमें ये समझना जरूर होता है कि कौन सी बीमारियों को किसमें हमें रोकथाम करना है।
1: अब हम बात करते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर रहते हैं काफी समय तक, खेलते कूदते हैं, तो उन बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, खास तौर पर बारिश के मौसम में, तो उसे बचाने के लिए होम्योपैथी में क्या कोई कारगर उपाय है?
0: सबसे पहले तो हम जितनी बीमारियां हैं अपनी सुरक्षा खुद से करें, जैसे बारिश के मौसम में संक्रमण ज्यादा रहता है उसका कारण रहता है कि नमी, ह्यूमिडिटी बॉडी में मौसम में होने के नाते कहीं भी हर जगहों पर नमी की वजह से फंगस का बढ़ने का जो सिरा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए कभी भी कुछ काम करें तो अपना साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि साफ जितना रखेंगे संक्रमण उतना कम होगा। बड़े बच्चे हैं, अपनी बातों को डॉक्टर के सामने बता सकते, छुपाने की जरूरत नहीं है, जैसे बड़े बच्चे किसी कुछ बड़े बीमारी में कुछ रहते हैं तो छुपा ले जाते हैं और वो छुपाने के साथ में बताते सोचते हैं कि गार्जियन को बताऊंगा तो वो डांटेंगे मुझे, तो जो बच्चे हैं इसलिए गार्जियन से बताते नहीं, तो बताना जरूर चाहिए, नहीं वो गंभीर समस्याओं का संक्रमण बारिश के समय में होता है। वायरल इन्फेक्शन, इसमें सबसे बड़ी बात जो हमने देखा है एक निमोनिया, सर्दी जुकाम हुआ, खांसी आ रही है, धीरे से भीग गया, बारिश में आए सो गए, पंखे की हवा लगा, लंग्स पूरी तरीके से कंजेस्ट हो गए। हम यहाँ पर सचेत करूंगा कि अगर ऐसी दिक्कत है तो डॉक्टर से परामर्श लें। अब रही बात होम्योपैथी की, बच्चों में अगर कुछ इसी तरीके से है तो हम सब नर्सिंग मेडिसिन बोलते हैं, सेम्बोगस नाइग्रा 30 पोटेंसी में 3 बार। बड़े बच्चे हैं, कभी भी सर्दी जुखाम बुखार खांसी के साथ में अगर किसी भी समस्या का रोग अगर उत्पन्न हो रहा है तो फेरम फॉर 6x, इसको जरूर याद कर लें। मैं इस दवा के बारे में इतनी कॉन्फिडेंस में और अपने 15 सालों का अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा कि फेरम फॉर सिक्स एक्स अगर मैंने बच्चों को दे दिया, चाहे छोटे बच्चों को दे दिया चाहे बड़े बच्चों, बिल्कुल भी आप इस दवाई को दे दीजिए पूरे कफ को जो कंजस्ट है, पूरे धीरे धीरे बाहर कर देगा आपकी खाने की क्षमता, आपकी जो बुखार है, जो कंजेशन है, धीरे धीरे वो अपने आप में नॉर्मल कर देगा।
1: हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत छोटे जो नवजात बच्चे रहते हैं, तो जब हम उन्हें दवाई दी जाती है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
0: देखिए, नवजात बच्चे, हम होम्योपैथी में 10 दिन का बच्चा हुआ और दवाई दीजिए, अब उसमें दवाइयां देना उचित है? बिल्कुल दिया जाता है। तो उसकी माँ साथ में रहे, तो क्योंकि वो माँ ही सब कुछ सिम्टम उसका बता सकता है कि मेरा बच्चा किस तरीके का हरकत करता है
1: जी,
0: दस्त कितनी बार किया, दस्त का कलर क्या था, खांसी किया तो किस तरीके से उसके सिम्टम आए कि सांस फूल रही थी, शरीर नीला पड़ गया, डिस्निया की कंडीशन हो जाती, निमोनिया आ गया। हमारा डॉक्टर का ऑब्जर्व, मैंने स्टेथोस्कोप लगाया, उसको समझा, देखा, सब कुछ समझ के उसको दवाइयां दिया, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता अपने मुंह से। छोटे बच्चों के लिए देर नहीं करना चाहिए। दस्त कई बार हो रहे हैं, एक बार हुआ तो ठीक है, बुखार तेज आ गया, या कभी कभी बुखार इंसेफ्लाइटिस एक कंडीशन होती है कि मस्तिष्क ज्वर, ये कभी अगर बच्चों को छोटे समय पर अगर वो बीमारियां हुआ, बुखार आया, अगर सही समय पर उसकी दवाइयां नहीं मिली, तो बच्चों को देखते देखते अचानक उसको इतनी गंभीर रूप में ताप आ जाएगा उसके शरीर में कि वो मुंह से बड़बड़ाने लगता है, छटपटाने लगता है, और गार्जियन उसमें बेचैन हो जाता है कि मेरे बेटे को क्या हो। तो कुछ समस्याएं होती है, उसको अभिभावक को जब डॉक्टर के पास जाए, जो लक्षण आपने जो समझा है अपनी भाषा में डॉक्टर को, अच्छी भाषा में आप बताइए, डॉक्टर खुद समझेगा, और आपका वो लक्षण बताना कितना गंभीर है और कितना कारगर डॉक्टर के लिए सिद्ध हो सकता है, इस बात को छुपाना नहीं चाहिए।
1: ये बताइएगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति और सामान्य जीवन शैली में अगर हम सुधार करते हैं, तो किस तरह से हमें क्या बेहतर परिणाम उसके मिल सकते हैं?
0: देखिए, हम तो होम्योपैथी के डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी की रही बात, हमारे लिए हर बीमारियां अपने आप में बड़ी ही सैद्धांतिक और तथ्यात्मक रूप से लक्षणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है, और इसको बहुत ही गहन चिकित्सा के रूप में गहन करके इसकी दवाइयों का सिलेक्शन होता है। अपने श्रोताओं से जरूर कहूंगा कि होम्योपैथी दवाइयों का एक बार जरूर चुनाव करें, क्योंकि ये किसी भी रोग को दबाती नहीं है, ये उनके लक्षणों के आधार पर, उसके जो सिम्टम आप बताते हैं उनके आधार पर चिकित्सक जो है चिकित्सा करता है। जैसे आप कहेंगे टीबी की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, बीमारियों के नाम से ये होम्योपैथी नहीं जानी चाहिए, लक्षणों के आधार पर जानी जाती है।
1: जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब समय हो गया है क्रम, उसका नाम है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम इसमें बात करेंगे कॉन्टेक्ट लेस हेल्थ टेक्नोलॉजी की। श्रोताओं, कॉन्टेक्ट लेस हेल्थ टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में समझना चाहें तो इसे संपर्क रहित स्वास्थ्य तकनीक कह सकते हैं। इसमें शरीर को छुए बिना या किसी तार या उपकरण को लगाए बिना भी दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन को मापा जा सकता है। इसके लिए मरीज के गद्दे के नीचे पतले सेंसर लगाए जाते हैं जो शरीर की बारीक हलचल पर भी नजर रखते हैं। इसके अलावा फेशियल स्कैनिंग कैमरा आपके चेहरे के रंग या त्वचा में होने वाले बदलाव से तनाव के स्तर या दिल की धड़कन को भी माप सकता है। ये टचलेस तकनीक जल्द ही सब जगह उपलब्ध होगी और आशा है इसमें सभी लोग आनंदित होंगे।

CJ.

0: बदलते मौसम में सुरक्षित रहने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कच्ची चीजें खमकाएं, पत्ता गोभी और सलाद जैसी कच्ची सब्जियों को खाने से बचें और अच्छे से उबाल कर या पका कर खाएं, और साथ ही पानी भी बहुत सारा पीते रहिए। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको स्वस्थ रखेगा। तो बस अब अनुराधा पेंडसे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं, और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं अनसुईया बोरलिया से कुछ मालवी गीत। कार्यक्रम का आरंभ इस लोक भजन से।

इसी गंगा गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान था। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं राम स्वरूप साकेत से चंद गज़लें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं अहमद फराज की इस गज़ल से।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:57 होने जा रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
4: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
3: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ।
4: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
3: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
4: और उसको पिएं छानकर उबालकर।
3: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
4: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
3: आओ मिलकर करें प्रयास,
4: शुद्ध पानी हो सबके पास।
5: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
2: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दो बज चुके हैं, आप सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का ये पहला नगमा आ रहा है ऐ दिल है मुश्किल फिल्म से। अरिजीत सिंह ने इसे गाया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने शब्द दिए हैं और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

ये गीत आप सुन रहे हैं श्रेय घोषाल और अरिजीत सिंह का गाया हुआ। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और धुन तैयार की है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद।

0: ये गीत आपने सुना एजेंट विनोद फिल्म से। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने इसे अपनी आवाज़ें दी थी। अमिताभ भट्टाचार्य इस गीत को लिखने वाले थे और धुन तैयार की थी प्रीतम ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति का कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: श्योपुर के बाद राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ग्वालियर पहुंची, जहां वायुसेना के विमान से ग्वालियर से दिल्ली रवाना हुई। इसके साथ ही उनका 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा संपन्न हुआ। ग्वालियर विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा एवं महापौर शोभा सिकरवार ने उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। भोपाल पहुंचकर श्री मुर्गन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। कल डॉक्टर मुर्गन देवास जिले की कन्नौद तहसील स्थित ग्राम डोकाकुई

पहुंचेंगे। यहां सुबह वे सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी एमपी लैड के तहत स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसी के तहत यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक भोपाल स्थित नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में चल रही है। बैठक के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अपने अपने सुझाव और प्रस्तुतियां कमेटी के समक्ष रख रहे हैं। इसके बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं दोपहर बाद विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। अब रुख करते हैं मौसम का। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान और उमस दोनों बढ़ गए हैं। राजधानी भोपाल में आज दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मैहर, अनूपपुर, कटनी और दमोह तथा सागर, विदिशा और अशोकनगर में तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे पर सावरी पुलिस चौकी क्षेत्र में 8 मजदूरों से भरे पिकअप वाहन और बेकाबू ट्रक के बीच सीधी भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के अस्पतालों, होटलों और व्यावसायिक भवनों में निर्धारित मानदंडों और नियमों का पालन जांचने के लिए निरीक्षण दल का गठन किया गया। पन्ना जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सूचनादाता प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसके तहत सही सूचना देने वाले को 1,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। आगरमालवा के सुसनेर में गीता भवन निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में लगने वाला प्रसिद्ध नागद्वारी मेला और यात्रा 7 अगस्त से 17 अगस्त नागपंचमी तक आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2 बजने जा रहे हैं। आप दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8 लाख

0: 15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
3: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान

0: और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आनंद बख्शी के संगीत निर्देशन में इस गीत को शब्द दिए थे आनंद, माफ कीजिएगा, आनंद बख्शी ने शब्द दिए थे और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया था किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये सभी दोस्त पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर सनावत से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित एवं उनका पूरा परिवार इसी गीत को सुनना चाहता था। करूला मुरादाबाद से अगली चिट्ठी आई है अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान की, और इसी गीत को सुनना चाहते थे सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी।

अमित त्रिवेदी का गाया हुआ गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में बोल अमिताभ भट्टाचार्य की फिल्म का नाम ब्लैकमेल। ख्वाहिशमंद हमारे दोस्त उनके नाम इस गीत के बाद।

आपकी फरमाइश के इस गीत को सुनवाने के लिए हमारे सभी दोस्तों ने चिट्ठी लिखी थी। ये हैं दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिगारपुर से सालिक पुजारी, अमरावती महाराष्ट्र सरोज चौक से ये खत आया है कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुज्तबा खान और राऊ भाई शाद शहीद भाई, गांधीबाग आकोला से रमेश काटनकर और वैशाली काटनकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अब हम सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश, जिनके नाम हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजौरिया। इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है पटेल नगर मालोट पंजाब से, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज शिमाली, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ये गीत है तेजाब फिल्म से लिया गया। अमित कुमार और साथियों ने इसे अपनी आवाज़ें दी है। धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, बोल जावेद अख्तर के।

0: अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो, शेरों का मैं हूँ
1: शेर यारो।
0: अरे कोई ना मुझसा
1: दलेर प्यारो,
0: के सच सच कहता मैं डट के रहता मैं आया है राज।

0: छुप के निशाना करोगा है, के धोखे में राजा तो ना आए। आया है राजा
1: लोगो रे लोगो,
0: राजा के संग संग
1: झूम लो
0: आया है राजा
1: लोगो रे लोगो,
0: राजा के संग संग।

ये गीत आप सुन रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों का गाया हुआ। अप्पू राजा फिल्म से इस गीत को हमने लिया है। प्रेम धवन ने इस गीत को शब्द दिए हैं और धुन है इलैयाराजा की। इस गीत को सुनवाने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, घंटा घर चौक, खंडवा से। प्रभाकर जोंघले, आरती जोंघले ने ये चिट्ठी लिख भेजी थी गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से। और कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए फरमाइश करता है हमारे ये सभी दोस्त, सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। ये चिट्ठी भी इंदौर से ही आई है, गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 से। अनिल कवचाले, नेहा फणीस, सीमा, सबीहा, पूजा, सुषमा और स्मिता की। इन्होंने सुनना चाहा है श्रेया घोषाल को। गीतकार है कुमार फरहान सईद ने धुन तैयार की है। आवाज है श्रेया घोषाल और फरहान सईद की। फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड।

0: हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म के इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री स्टार्मर का कहना है कि वे परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से उमस बढ़ गई है। और फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:00। कार्यक्रम आजकल कल का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:40 पर। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं 6:45 पर। ग्राम सभा का प्रसारण समय रहेगा 7:21 और सुर्खियों में इसे आप सुनेंगे रात 8:00। आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। प्रसारण समय रहेगा रात्रि 9:30 और आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे 10:30 संगीत गोस्वामी से राग यमन में ख्याल गायन। ये थी संक्षिप्त सी जानकारी उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में सांध्यकालीन सभा में सुन सकते हैं। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आप हमारी सभा का प्रसारण शाम 5:00 से सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार। DTH के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। अब सुनिए।

मोदी के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात की। दो दिवसीय प्रवास के दौरान श्री मुरुगन कल देवास जिले के डोकाकुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ एक बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे और 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में डॉक्टर बीना उन्नीकृष्णन की डॉक्यूमेंट्री Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन का प्रदर्शन हुआ। प्रदेश के संस्कृति विभाग के सहयोग से बनी ये फिल्म मुरैना जिले के मितावली स्थित मंदिर पर आधारित है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार आकाशवाणी के प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त वंशिका श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ नए विचार, कुछ नई जानकारियां और बेहतरीन फिल्मी गीतों का शानदार संगम। तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रीन ट्रांसपोर्ट के बारे में, जानेंगे कुछ खास बातें जनरेटिव एआई के बारे में और सुनेंगे कुछ मधुर फिल्मी गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म कॉकटेल से। स्वर थे नीरज श्रीधर, कविता सेठ के, गीतकार इरशाद कमल और संगीतकार प्रीतम। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि हम पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लेते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से उधार लेते हैं। इसलिए आज यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। इसी सोच के साथ आज का विषय है ग्रीन ट्रांसपोर्ट, यानी ऐसा परिवहन जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। आज हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी वाहन का उपयोग करते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारणों में से एक हैं। बढ़ता धुआं केवल पर्यावरण ही नहीं, बल्कि हमारी सेहत पर भी बुरा असर डालता है। सांस से जुड़ी बीमारियां, बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में ग्रीन ट्रांसपोर्ट एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल, मेट्रो

भारत भी इस दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है और चार्जिंग स्टेशन भी तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। दोस्तों, प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के बहुत कुछ देती है। अब हमारी बारी है कि हम भी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण ही स्वच्छ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और इसी सकारात्मक संदेश के साथ बढ़ते हैं अपने अगले खूबसूरत फिल्मी गीत की ओर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म चलते चलते से। स्वर थे अभिजीत और अलका याग्निक के, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार जतिन ललित। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, और इसी का एक आधुनिक रूप है जनरेटिव AI, जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जनरेटिव AI ऐसी तकनीक है जो केवल जानकारी खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि नई सामग्री भी तैयार कर सकती है। यह लेख लिख सकती है, चित्र बना सकती है, संगीत तैयार कर सकती है, वीडियो बनाने में मदद कर सकती है और कई तरह के रचनात्मक कार्यों को आसान बना सकती है। दोस्तों इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे इस प्यारे से गीत के बाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा से। स्वर थे फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल के, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जनरेटिव एआई की। आज

छात्र पढ़ाई में कठिन विषयों को समझने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। शिक्षक बेहतर नोट्स और अध्ययन सामग्री की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर्स, लेखक, डिजाइनर्स और व्यवसायी भी अपने अपने क्षेत्र में इस तकनीक की मदद से समय बचा रहे हैं और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन हर तकनीक के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जनरेटिव AI से मिलने वाली हर जानकारी को आंख बंद करके सही मान लेना उचित नहीं है। कई बार यह गलत या अधूरी जानकारी भी दे सकता है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांचना चाहिए। युवाओं के लिए यह तकनीक एक बड़ा अवसर भी है। जो लोग नई तकनीकों को सीखते हैं, वे भविष्य के रोजगार और नए करियर विकल्पों के लिए एक बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। आने वाले समय में AI से जुड़े कौशल कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, AI हमारी मदद कर सकता है, हमारी जगह नहीं ले सकता। इंसान की कल्पना शक्ति, नैतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता आज भी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तकनीक को अपना सहायक बनाइए, उसका पूरी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ उपयोग कीजिए और इसी उम्मीद के साथ कि तकनीक हमारे जीवन को और बेहतर बनाएगी, आइए सुनते हैं आज का अगला शानदार फिल्मी गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म आजा नटले से। स्वर है राहत फतेह अली खान के, गीतकार जयदीप साहनी और संगीतकार सलीम सुलेमान। दोस्तों अब समय हो गया है आज की रोजगार सूचना का। कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा SSC CGL 2026 की अधिसूचना 12,256 पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट SSG पर जारी की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 22 जून 2026 है। इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 32 वर्ष के बीच है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बार बार देखो से। स्वर थे अमर अर्शी, बादशाह और नेहा कक्कर के। गीतकार अमरिक सिंह कुमार और संगीतकार जसलीन रॉय। और दोस्तों आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त है आपसे विदा लेने का। और दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और दीजिए आपकी रेडियो होस्ट वंशिका श्रीवास्तव को इजाजत।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। आवाज़ें हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीत प्रीतम का, और आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब और फारिकी

अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब फरीदी और अल्तमाश फरीदी की आवाज़ में इस खूबसूरत गीत के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और स्वानंद किरकिरे की आवाज़ में, लगा चुनरी में दाग फिल्म से। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया है शांतनु मोहित्रा ने।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
3: अंदाज, प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: Marco Tata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानीज एवर बीन टोल्ड। जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। केंद्र सरकार ने दिशा कार्यक्रम न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नए समाधानों की तलाश के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम इस वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। 2 दिवसीय अपने प्रवास के दौरान श्री मुरुगन कल देवास जिले के डोकाकुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिका अध्यक्ष को वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए ये निर्देश दिए। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ एक बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे। और फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से दियोशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और
2: जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
3: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
2: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया

सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी जीवन यात्रा और अब तक के अनुभवों के बारे में कुछ बताएं। आप अपने जीवन और कार्यों की इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं?

0: का काम है। अकेला ही रहता है वो, झाड़ आदि तूफान जो भी है उसको सामना करना पड़ता है। और आधारी रात में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा गाड़ी का तो भी देखभाल करने होता था।
1: अशोक जी, आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपकी प्रमुख प्रेरणा क्या रही? आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: प्रेरणा मिला काम करते प्रगति का साथ रहते हुए। अंधारी डिब्बा में जब अकेलापन था उस टाइम में चिंता

उन्हें नौकरी खत्म हो जाता है, ड्यूटी शेष शेष टाइम में तो रेस्ट मिलता है, घर चला आता है, कभी रानी हूं में चला जाता है। उसके बाद जब घर फिकता, वही जो भावना मेरा कल्पना जो देखा हम जो फेस किया वही चीज हम आके पेन पेपर में लिख, जो मेरा चिंतन क्या है, क्या हम बाहर जगत में टोबी के में देखा और क्या होना चाहिए। मेरा भी वैसा ही है, एक संसार में फूल खिलती है और फूल भी झड़ जाता।

नहीं है, तो एक तो जगह में कीमत है जहां आप ऐसा काम करना है जो काम समाज का हर आदमी को काम में आएगा, चेतना, समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा। क्या हम देखा आदमी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज एक अनुप्रेरणा हम प्रकृति से मिला।

0: परिश्रम करता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसे होता है, अगेंस्ट द नेचर वी हैव टू परफॉर्म आवर जॉब फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये हम देखा और उसी चीज का हम किताब में लिखा है।
1: अशोक जी, आपको इस वर्ष देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चुना गया है, तो ये न केवल आपके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है बल्कि आपके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी है। तो इस सम्मान के लिए चुने जाने पर आप क्या

मेरा काम भी सफल हुआ, जिससे कारण से हमको मिला। 30 साल तक हम ये साधना किया, लेखा पढ़ा के साथ जुड़ा हुआ है और वो काम करते चले। हम कभी नहीं सोचा कर्मण्येवाधि के रास्ते में पुरुष पदाचरण, मैंने कभी नहीं सोचा जे हमारा एक पुरस्कार मिलेगा। हम काम के लिए काम करता था, यही हमारा उद्देश्य था, लेकिन जो मिल गया तो उसमें और तो मैं हमारा इंस्पिरेशन वाला समाज को हम और कुछ दे सकता है, यही सोच के अभी मेरा खुशी होता है। हाँ, जो काम धन्यवाद ज्ञापन करता है भारत सरकार।

0: गोविंद जी को हमारा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जो सही कर्मों का फल मिला है, मेरा मेरा समाज को मिला, हम दलित समाज में बिलोंग करता है उसको भी, और जो शिक्षा साहित्यिक अनुप्रेरणाएं, जिसको शिक्षा प्रेमी आदमी है, शिक्षा अनुरोगी मनुष्य, उसके साथ में जो हमारा विजय आज मिला है, उसको साथ मेरा विजय हम बांटने चाहता है।
1: अशोक जी, आपके अनुसार आज के युवाओं को अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ने के लिए किन गुणों को विकसित करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए?

उसका ऊपर डिवोशन रहेगा काम का ऊपर, तब कामयाब हो जाएगा। यही मेरा सोच है और यही मैंने सोच हम संसार को, मनुष्य आदमी को, समाज को देने चाहता है। जे शिक्षा चेतना

0: अपना काम हो जाता है, चला जाता है। लेकिन वास्तविक में जो है वो एकेलाय है। सुनने से कोई चीज आविष्कार होता है और सुनने से ही विलीन हो जाता है, यही मेरा सिद्धांत है। तो इसमें कोई आवेश नहीं है, यही हमारा दीर्घ सिद्धांत है।
1: अशोक जी, आपका शैक्षणिक जीवन कैसा रहा और आपकी शिक्षा ने आपके व्यक्तित्व या फिर आपके कार्यक्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया? और जब आप एक छात्र थे तो किन अनुभवों ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया था?

रोजगार करना है और उसके साथ हमारा जो चिंतन है उसको विकास करना है। जब मेरा विकास नहीं होगा तो हमारा परिवार का विकास भी

0: से एक ही चीज आनंद मिलता था, किताब मिला। किताब पढ़ने से एक तो आनंद मिलता था और चेतना भी उसको साथ हो जाता है, शिक्षा भी उसमें ही रहता है, यही मेरा विचार था। तो हम शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ था, अभी तक जब तक जिंदा रहेंगे उसको समझो रहेगा।
1: अशोक जी, हमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है podcast.airnews@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आनंद फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाज है मुकेश की और योगेश का लिखा हुआ ये गीत है। धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

आनंद आश्रम। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है श्यामल मित्रा ने।

नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है योग। केवल कसरत नहीं, नए भारत के आत्मबल और सशक्त अर्थव्यवस्था का आधार। आलेख श्री जगदीश देवड़ा का है। आप मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री हैं। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सदियों पहले भारत की पावन भूमि से उपजा योग आज वैश्विक चेतना का सबसे बड़ा संवाहक बन चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी, तब वह केवल एक पद्धति का सम्मान नहीं था, बल्कि भारत की प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वैश्विक स्तर पर स्वीकार करना था। आज योग धर्म, जाति, भूगोल और सीमाओं के बंधनों को तोड़कर पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरो रहा है। लेकिन 21वीं सदी के इस दौर में हमें योग को सिर्फ शारीरिक व्यायाम या कुछ आसनों तक सीमित रखने की भूल नहीं करनी चाहिए। योग एक पूर्ण जीवन दर्शन है जो व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति को तो सुनिश्चित करता ही है, इसके साथ ही राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का अदृश्य इंजन भी है। एक अर्थशास्त्री या वित्त मंत्री के दृष्टिकोण से जब मैं योग को देखता हूँ तो मुझे इसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद, GDP और नागरिकों की क्रय शक्ति को मजबूत करने का एक बड़ा माध्यम दिखाई देता है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में आज भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी बीमारी पर अपनी जेब से होने वाला खर्च परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ है। योग मुख्य रूप से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रणाली है। यदि देश का नागरिक हर दिन सिर्फ 30 मिनट योग को देता है तो वह जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस से दूर रहता है। स्वस्थ नागरिक का सीधा अर्थ है अस्पतालों और दवाओं पर होने वाले खर्च में कमी। यही बची हुई पूंजी परिवारों की बचत बनती है जो आगे चलकर देश के वित्तीय चक्र को गति देती है। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी इस युवा आबादी का लाभ हमें तभी मिल सकता है जब यह युवा कार्यबल न केवल डिग्रीधारी हो बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी ऊर्जावान हो। कॉर्पोरेट जगत से लेकर सरकारी विभागों तक बर्नआउट और मानसिक तनाव कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। योग और प्राणायाम व्यक्ति की एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जब कार्यबल की कार्यक्षमता बढ़ती है तो उसका सीधा सकारात्मक असर उद्योगों के उत्पादन और अंततः देश की आर्थिक विकास दर पर पड़ता है। योग भारत के युवाओं को भीतर से सशक्त कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार योग को केवल आयोजनों तक सीमित न रखकर इसे अपनी विकास नीतियों का हिस्सा बना रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां तैयार की हैं। हमारे अमरकंटक, पचमढ़ी और उज्जैन जैसे सांस्कृतिक केंद्र आज न केवल आध्यात्म बल्कि योग और आयुर्वेद के बड़े हब के रूप में उभर रहे हैं। हमने स्कूली शिक्षा में खेल और योग को प्राथमिकता दी है ताकि आने वाली पीढ़ी बचपन से ही इस जीवन शैली को अपनाए। इसके अलावा हमारे प्रदेश का आयुष विभाग लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योग शिविरों के माध्यम से जन जन को निरोगी बनाने के मिशन में जुटा हुआ है। आज योग ने दुनिया भर में एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है जिसे वेलनेस इकोनॉमी कहा जा सकता है। योग मैट और परिधानों से लेकर डिजिटल योग एप्लीकेशन और अंतर्राष्ट्रीय वेलनेस रिट्रीट का बाजार अरबों डॉलर का हो चुका है। भारत इस वैश्विक योग अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। हमारे देश के युवा आज दुनिया भर में योग विद्या के ट्रेनर और थेरेपिस्ट के रूप में रोजगार पा रहे हैं। यह लोकल टू ग्लोबल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। योग हमें जोड़ना सिखाता है, स्वयं को प्रकृति से, व्यक्ति को समाज से और नागरिक को राष्ट्र से। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में विकसित भारत के उस सपने को पूरा करने का मार्ग है जहां नागरिक केवल भौतिक रूप से समृद्ध न हो बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सुदृढ़ हो। तो आइए हम सब योग को साल में सिर्फ एक दिन का उत्सव न मानकर अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब एक एक नागरिक स्वस्थ और संकल्पवान होगा तभी एक समर्थ, सक्षम और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। आजकल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, विषय था योग केवल कसरत नहीं, नए भारत के आत्मबल और सशक्त अर्थव्यवस्था का आधार। आलेख श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबी अलमास। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस सप्ताह हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 सालों के दौरान उनके द्वारा आम नागरिक के लिए चलाई महत्वपूर्ण योजनाओं पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलों से कैसे आम नागरिक के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। पहले हम बात करेंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि
1: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
0: अब हम बात करेंगे उन हितग्राहियों की जिनके जीवन में केंद्र सरकार की योजनाओं ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की हितग्राही एकता टकरानी बताती हैं कि
2: मेरा नाम एकता टकरानी है। मैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितकारी हूं और जिसकी अंदर 6,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई से मैंने अपना इलाज, जो भी जांचें थी उनको सही समय पर कराया, अपने बच्चे का पालन पोषण किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं।
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने वाले मिश्री लाल चौधरी बताते हैं,
3: मुझे जनधन योजना में खाता खुलवाने का प्रथम लाभ मिला। उस योजना से मेरा अन्य किसी भी प्रकार का पैसा सीधा मेरे खाते में आता है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है जबलपुर जिले से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी की यह रिपोर्ट।
4: संस्कारधानी का ऐतिहासिक कैरिसन ग्राउंड आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय नजर आया। महामहिम राष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मां नर्मदा की पावन भूमि से देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि
5: मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज हम यहां भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिया। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं, साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है।
4: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
0: हमारी दूसरी खबर है इंदौर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में अनेक स्थान पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित

0: आयोजित किए गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता मनिंद्र कुमार दुबे।
1: इंदौर जिला मुख्यालय पर केंद्रीय जनजाति कार्य विभाग राज्य मंत्री दुर्गादास उइके के मुख्य आतिथ्य में विश्व योग दिवस पर सामूहिक योग का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन, आयुष विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि योग केवल व्यायाम तक सीमित नहीं है, यह हमें आध्यात्मिक और अनुशासित रूप से समृद्ध बनाता है। आयोजन की विस्तार से जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर शांता स्वामी भार्गव ने आकाशवाणी को बताया।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत इंदौर जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम बास्केटबॉल स्टेडियम में किया गया। यहाँ पर 10 से 12 स्कूलों के बच्चे, जिनकी संख्या लगभग 250 से 300 थी, कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदौर जिले में विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया और जो इंदौर जिले का मुख्य कार्यक्रम था, इसमें 500 से अधिक लोग सहभागी बने। विद्यालय में जो योग करने वाले बच्चे थे, उनका ऑनलाइन पंजीयन भी किया गया, जिसकी संख्या 1200 के है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राध्यापक और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश भार्गव ने योग को स्वस्थ जीवन का गुरु मंत्र बताया।
3: योग भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा एवं चिकित्सा पद्धति है, जिसको पूरे विश्व में आत्मसात किया है। योग करने से शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। योग जीवन का आवश्यक अंग है। प्रतिदिन प्रातः 30 मिनट योग के लिए अवश्य निकालना चाहिए। योग का प्रमुख उद्देश्य है कि मनुष्य बीमार ही न हो। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि देश का पैसा अनावश्यक रूप से अस्पताल बनाने, इंस्ट्रूमेंट खरीदने, दवाइयां खरीदने में खर्च होने से बचता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि वह बीमार न हो।
1: इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर में गोपुर चौराहे पर 10,000 से ज्यादा साधकों ने 3 मिनट से ज्यादा सामूहिक भ्रामरी प्राणायाम कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस आयोजन में इंदौर की 70 से अधिक योग संस्थाएं, खेल संगठन, 150 से अधिक सामाजिक संस्थाएं और समाज के विभिन्न वर्ग के लोग शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर खंडवा जिले से है, जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना जिले में वित्तीय सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनकर उभरी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना और उससे जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं खंडवा जिले में वित्तीय सशक्तिकरण का मजबूत आधार बन रही है। जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री गणेश ताईकर ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जिले में अब तक कुल 6,95,213 लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत करीब 2,02,236 हितग्राही, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6,02,338 हितग्राही तथा अटल पेंशन योजना के तहत 82,599 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। एलडीएम श्री ताईकर ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक बैंकिंग सेवाओं, बीमा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ रहे हैं। जनधन खातों के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं की राशि सीधे हितग्राही के खाते में पहुँच रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना तथा उससे संबंध बीमा और पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
0: हमारी अगली खबर खरगोन से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। जिले भर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में करीब 1,00,000 से अधिक स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं खरगोन से हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
5: खरगोन जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। जिले भर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में करीब 1,00,000 से अधिक स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले में मुख्य कार्यक्रम खरगोन की अनाज मंडी में आयोजित हुआ, जहां प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री एवं खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पाटीदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर योग ने पिछले वर्षों में वैश्विक पहचान बनाई है और आज दुनिया भर के लोग इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। योग दिवस के अवसर पर जिले भर में स्वस्थ, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से फिट इंडिया और निरोगी

0: के संकल्प को भी दोहराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर
2: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242। सुनो ना।
3: हाँ।
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ,
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
4: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही।

0: में करिश्मा राय। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वागचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर का पार्टी में स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और जिला प्रशासन शासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांधिकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनिएगा वृद्धावस्था में योग फॉर हेल्दी एजिंग विषय पर विशेषज्ञों एवं योगाचार्यों से बातचीत पर ओबी आधारित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा होगी। 8:15 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पब्लिक स्पीक 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में 10:30 पर सुनेगा संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग होगा यमन। और अब बारी है हमारे कल के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में कल सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा होगा। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेगा रमेश इंदुबासु की गाए भजन और गीत। 9:30 पर शब्द सागर कार्यक्रम में आप सुनेगा ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और सुभाष जाटव का काव्य पाठ। हर रोज की तरह जिले की चिट्ठी होगी सुबह 10 बजे। 10:05 पर पेश करेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनेगा सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन, ताल होगा एक ताल। और इसी प्रोग्राम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा तबले पर 3 ताल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे दिन में 12 बजे और 2:30 पर। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेगा धारावाहिक भुवन मोहिनी का 5वां भाग। 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम। 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम। दिन में 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होंगे। शाम 5 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का दिल्ली से सजीव प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:33 पर रात्रि 8:15 पर और 10 बजे आनंद ले सकते हैं आप फिल्म संगीत का। 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं चित्रपट संगीत। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता सतत कृषि विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका, जानकारी देंगी डॉक्टर मीना यादव। रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम सुर्खियों में और रात्रि 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम आईना में आप सुनेगा गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम आबशारी गजल। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें कि कल शाम 5 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का दिल्ली से सजीव प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in।

0: हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा,
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो में चीता मित्रों से किया संवाद, चीता संरक्षण की ली जानकारी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में विशेष पखवाड़े का होगा आयोजन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए अब एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी अनुमति। नई व्यवस्था आज से लागू। और प्रदेश में लंबा हुआ मानसून का इंतजार, 25 जून के बाद इसके राज्य में प्रवेश के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 2 दिवसीय कूनो नेशनल पार्क के प्रवास के दौरान आज चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर किए जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। श्रीमती मुर्मू ने सभी चीता मित्रों से 1-to-1 चर्चा कर परियोजना के लिए उनके द्वारा मानसेवी रूप से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: राष्ट्रपति इसके बाद कूनो से ग्वालियर पहुंची, जहां से वे अपना 5 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकायों के महापौर तथा नगरपालिका अध्यक्ष को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा मार्गों और उद्यानों का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जा सकता है। इस प्रकार की पहल के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक रूप से किया जाए तथा सक्षम स्तर से सभी स्वीकृतियां अवश्य ली जाएं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल के प्रशासन अकादमी में समान नागरिक संहिता UCC की राज्य स्तरीय समिति की अंतिम दौर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई दिल्ली में एक अन्य आवश्यक मीटिंग होने के कारण व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकी। उनकी अनुपस्थिति में समिति के अन्य सदस्य शत्रुघ्न सिंह, बुद्ध सिंह, गोपाल शर्मा, अनूप नायर और शोभा पैठणकर ने समिति के सदस्य सचिव अजय कटेसरिया के साथ मिलकर अलग अलग 4 सत्रों में विभिन्न पक्षों के साथ महत्वपूर्ण

सुझाव लिए। बैठक में देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस महत्वपूर्ण चर्चा में केवल भाजपा और सीपीएम के नेता ही शामिल होने पहुंचे, जबकि कांग्रेस सहित अन्य दल बैठक से नदारद रहे। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ 1 बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे। ये व्यवस्था प्रोटोकॉल से आने वाले ऐसे मोबाइल नंबरों पर भी लागू होगी जिनसे हर माह भस्म आरती की अनुमति ली जा रही है। हालांकि महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि यह व्यवस्था पहले से ही लागू है, अब इसे और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि आम श्रद्धालुओं को भी आसानी से दर्शन का मौका मिले। अब एक ही मोबाइल नंबर का बार बार उपयोग नहीं हो सकेगा। इस नियम से उन आम भक्तों को फायदा होगा जो महीनों तक ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाते थे। मंदिर समिति का दावा है कि इससे भस्म आरती में पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 के समापन समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आचारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित उत्पादों एवं डिजाइन हस्तक्षेपों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही शिल्पकारों, डिजाइन विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समारोह में जनजातीय कला, शिल्प और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों तथा डिजाइन आधारित नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसका उपयोग करके करीब 40,00,000 लोगों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और करीब 8.5 लोगों ने अपने पते अपडेट करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए एक क्लिक में लॉक या अनलॉक करना, उपस्थिति के साक्ष्य के लिए चेहरा प्रमाणित करना, QR बेस्ड परिचय पत्र और विजिटिंग कार्ड जैसी सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में डॉ. बीना उन्नीकृष्णन की डॉक्यूमेंट्री Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन का प्रदर्शन किया गया। संस्कृति विभाग के सहयोग से निर्मित यह डॉक्यूमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहली बार प्रदर्शित की गई। ये फिल्म प्रदेश के मितावली स्थित मंदिर पर बनी है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश के मितावली, मुरैना, जबलपुर और खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर हमारी पुरातन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। मितावली का 64 योगिनी मंदिर, जिसने भारत की पुरानी संसद भवन की वास्तुकला को प्रेरित किया, आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल है। Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन जैसी परियोजना इस अद्वितीय विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून तय समय से करीब 7 दिन पीछे चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री के लिए अभी 4 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। 23 जून तक मानसून के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि 25 जून के बाद इसके मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के आसार हैं। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया कि शहर में आज सुबह आधे घंटे से अधिक अच्छी बारिश हुई, जिससे वातावरण में ठंडक आई और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। इस बीच प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां आज भी जारी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल की ITI प्रभातपट्टनम में वर्ष 2026 की प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। झाबुआ कलेक्टर ने शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए कन्या माध्यमिक शाला पिटोल बेड़ी के सहायक शिक्षकों और प्रधान पाठक को सम्मानित किया। आज सीहोर जिले के बमूलिया, मुगाली, पांगरा, बागेर और नौगांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को NHRC दिल्ली द्वारा NQAS प्रमाणित किया गया। शिवपुरी में PM जनमन आवास योजना में लापरवाही को लेकर ग्राम पंचायत करई के सचिव को निलंबित किया गया। गुना में युवा संगम अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 24 जून को शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में किया जाएगा। और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खंडवा के द्वारा प्लम्बिंग एवं सैनिटरी वर्क का 6 दिवसीय प्रशिक्षण 10 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो में चीता मित्रों से किया संवाद, चीता संरक्षण के लिए जानकारी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में विशेष पखवाड़े का होगा आयोजन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए अब एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ 1 बार मिलेगी अनुमति। नई व्यवस्था आज से लागू। और प्रदेश में लंबा हुआ मानसून का इंतजार, 25 जून के बाद इसके राज्य में प्रवेश के आसार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी भैया बहनन को निधि बहन की राम राम। भैया आज हम अपने चौपाल कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं तन मन धन सबसे ऊपर वन। इसके साथ साथ भैया हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। साथ ही भैया हम एक और चर्चा कर रहे हैं जी को विषय रहेगा ऊर्जा संरक्षण क्यों और कैसे। तो भैया सबसे पहले हम बात करत हैं तन मन धन सबसे ऊपर वन। हाँ भैया तन मन धन सबसे ऊपर वन को भाव है कि यदि भौतिक सुख सुविधाओं और शारीरिक मानसिक सुख से भी बढ़कर प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षण है। वनों की हरियाली और शुद्ध वातावरण ही हमारे उत्तम स्वास्थ्य और शांति को असली आधार है। यही लाने भैया वनों को संरक्षण आवश्यक है। वनों को संरक्षण को अर्थ है कि वनों की कटाई को रोकनो और इनको वैज्ञानिक प्रबंधन करनो। ई जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करवे, जैव विविधता को बचावे, ऑक्सीजन को स्तर बनाए रखवे और प्राकृतिक आपदाओं से हमारी रक्षा करवे के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। वनों की कटाई आग और अतिक्रमण से बचानो हमारे पर्यावरण और मानव जीवन की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भैया पेड़ ऑक्सीजन छोड़त हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करत हैं जो जलवायु को स्थिर राखत है। जंगल कई वन्य जीवों और औषधियों पौधन को प्राकृतिक आवास होते। वनों की जड़ें माटी को बांधकर राखत हैं जिसे भैया भूकटाव और बाढ़ जैसी आपदाओं पर नियंत्रण रहते हैं। भैया वन कोनो भी देश की प्राकृतिक संपदा को महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये ना ही केवल मानव जीवन के लिए आवश्यक है और उनको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि भैया अनगिनत जीव जंतुओं को भी घर है। वन पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को एक अनिवार्य हिस्सा है। वन पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाए रखत है। वनों में सघन वृक्षों द्वारा शुद्ध वायु को निर्माण होत है जो हमारे जीवन रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज भैया जब तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों को क्षेत्र लगातार घट रहो है, तब भैया वनों को संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो जाते है। यही लाने भैया वनों की सुरक्षा तथा इनको विस्तार मानव जाति के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भैया तन मन धन सबसे ऊपर वन। तो भैया ये तो बात भई वनों की। इसके बाद भैया हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। भैया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा 1 मई 2000

2016 को शुरू करी गई एक कल्याणकारी योजना है। जीको भैया मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करके चूल्हे के धुएं से बिनखों मुक्ति दिलानो है। ई के तहत लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर रुपये 300 की सब्सिडी भी दी जात है। भैया अपई केंद्र सरकार द्वारा शुरू करी गई ई योजना से गरीब महिलाओं को जल्दी ही माटी के चूल्हा से आज़ादी मिल जाएगी। ई योजना को मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रन में खाना पकावे के लिए उपयोग में आवे वाले जीवाश्म ईंधन की जगह भैया एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देनो है और इनकी सेहत की भी सुरक्षा करनो है। गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मुहैया करावे के लिए मंत्रिमंडल ने 8,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित एलपीजी की कीमतों को कम करवे को निर्णय व्यक्तियों पर वित्तीय तनाव को कम करवे और बिनके कल्याण को बढ़ावे के लिए हमारे निरंतर प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है। ई कटौती आवश्यक वस्तुओं को किफ़ायती दरों पर अधिक सुलभ बनाकर हमारे नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देवे के प्रति हमारे अटूट समय पर समर्पण को रेखांकित करत है। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन के लिए कोनो सुरक्षा जमा या शुल्क ना ही देनो होते। सुरक्षा जमा रेगुलेटर पाइप और गैस चूल्हा सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान करो जात है। साथ ही भैया पहली रिफिल भी मुफ्त होते। अब पात्रता मानदंड की बात करें तो भैया आवेदक महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनो चाहिए। घर के कोनो भी अन्य सदस्य के नाम पहले से कोनो भी एलपीजी कनेक्शन ना ही होनो चाहिए। अब आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो भैया ई में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या परिवार के सदस्यों को विवरण और बैंक खाते की जानकारी। तो भैया ये कछु आवश्यक दस्तावेज जमा करके हमारी ग्रामीण महिलाएं ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लाभ ले सकत हैं। तो भैया ये तो बात भई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। भैया अब हम बात करत हैं ऊर्जा संरक्षण क्यों और कैसे। भैया ऊर्जा संरक्षण को अर्थ है ऊर्जा की बर्बादी को रोकनो और उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों को समझदारी से उपयोग करनो, ऊर्जा बचानो, पर्यावरण संरक्षण और पैसे बचावे के लिए सबसे प्रभावी कदमों में से एक है। अब ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है भैया? तो बिजली बनावे के लिए अक्सर कोयले और तेल को उपयोग होते हैं, जिसे भैया प्रदूषण और ग्रीन हाउस जैसी गैसें निकलत हैं। ऊर्जा बचावे से ग्लोबल वार्मिंग कम होते हैं और पर्यावरण भी सुरक्षित रहते हैं। आर्थिक बचत होते हैं, का है कि भैया घर या ऑफिस में ऊर्जा की खपत कम करवे से बिजली को बिल कम आउत है। संसाधनों को संरक्षण भी होते हैं भैया, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन सीमित हैं। ऊर्जा बचाकर हम बिनखों भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। अब ऊर्जा संरक्षण करनो कैसे है? तो भैया ई के लिए हमको अनावश्यक लाइट को ना ही जलानो है। जैसे यदि हम कमरा में बैठे हैं तो उस समय हम लाइट जला के बैठ सकते हैं, पंखा चला के बैठ सकते हैं, लेकिन भैया जैसे ही हम कमरा से बाहर आउत हैं उसके बाद भैया सारी लाइटें और सार पंखा वगैरह को हमको बंद रखनो है। अब एलईडी बल्ब को भी उपयोग करना है, कासे कि भैया उसे बिजली को बिल थोड़ा सो कम आउत है।

0: साधारण बल्ब के बजाय भैया एलईडी और ऊर्जा दक्ष उपकरणों को ही प्रयोग करना है। उपयोग में ना ही होने पर टीवी को भी भैया प्लग निकाल के रखना है। दिन के समय में भैया खिड़कियों और पर्दों को खुला रखना है, जिससे कि है वो सूरज की जो रोशनी है भैया वो कमरे में आ सके और अच्छो से उजाला रह सके। काहे कि फिर अगर सूर्य को उजाला अगर खिड़की दरवाजन से बाहर से अंदर आ गो तो भैया हमको लाइट कम से कम जलानी पड़ेगी, तो बिजली की भी बचत होगी। मोटर को सही उपयोग करना है और पानी की बर्बादी को भी रोकना है, क्योंकि भैया पानी को शुद्ध करवे और सप्लाई करवे में भी भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होते। तो भैया एक कछु छोटे छोटे उपायन से हम ऊर्जा को संरक्षण कर सकते हैं, बिजली को बचा सकते हैं। तो भैया ये तो बात भई अब ऊर्जा संरक्षण की। अब भैया बतियात बतियात तो मुलक देर हो गई है, तो भैया अब समय हो गया है आप सभी को एक लोकगीत सुनवावे को, और जाएगा रहे हैं बाबूलाल राजपूत।
1: हरे

0: भैया सुन रहे हते जो लोकगीत और जाय गा रहे हते बाबूलाल राजपूत। अब भैया जैसे कि हम देख रहे हैं कि बरसात को मौसम आवे बारो है और बरसात के ई मौसम में हमको कछु पूर्व और आरंभिक तैयारी करवे की ज़रूरत होत है अपाए पशुधन के लाने बिनकी उचित देखभाल करनो होत है ई बरसात के मौसम में, जिसे भैया हमको बिन से अच्छो उत्पादन मिल सके। यही संदर्भ में भैया हम आपको सुनवावे जा रहे हैं एक भेंट वार्ता, जी को विषय है बरसात पूर्व एवं आरंभिक बारिश में पशुधन की उचित देखभाल। इसमें वार्ताकार हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद यादव और इनसे बता रहे हैं अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया सुनत हैं ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं गर्मी अब धीरे धीरे जाने को है और बरसात का आगमन आने को है, तो ये बरसात और गर्मी का एक तरह से संधि काल है। और जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो मौसम में भी बदलाव आता है और प्रकृति में भी बदलाव आता है, और प्रकृति के साथ साथ प्रकृति जन यानी कि मनुष्य में जानवरों की प्रवृत्ति में भी बदलाव देखने को मिलता है। आज जो बातचीत का विषय है वो है बरसात पूर्व एवं आरंभिक बारिश में पशुधन की देखभाल। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर भगवती प्रसाद यादव हैं। वर्तमान में आप उपसंचालक का कार्य देख रहे हैं पशुपालन विभाग में, मूलतः सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब सभी सुनने वालों के मध्य में स्वागत है,
2: बहुत बहुत नमस्ते सभी को।
1: और जैसा कि विषय था कि बरसात पूर्व और आरंभिक वर्षा, ये वही समय लगभग चल रहा है।
2: बिल्कुल,
1: पशुधन किसान का एक ऐसा प्राणी है कि जो उसकी आमदनी का बहुत बड़ा सोर्स है, आमदनी लगातार आती रहे इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो इस जाती हुई गर्मी या ये बोले आरंभिक बरसात, इस दौरान हमें पशु का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, टीकाकरण के तौर पर भी, उसके रखरखाव के तौर पर भी, कि हम अच्छे से अच्छा ख्याल रखें ताकि हमारा दुग्ध उत्पादन घटे नहीं और हमारी इनकम सतत बनी रहे।
2: बड़ा अच्छा मेरे को विषय दिया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी करीबन 15 दिन से लेके 20 दिन तक का टाइम मानसून आने का लग रहा है कि अपने पास

अभी है और मानसून आने के 20 दिन के पहले जो बहुत आवश्यक तैयारियां जो हम पशुपालकों को करनी है, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हमारे जो पशु हैं, जो जहां उनके बाड़े में हम उनको रखते हैं, तो उनके बाड़े में जो उनका रहने का स्थान है, जिसको आप लोग चाहे छप्पर से बनाते हो, तो कभी ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ियों से घास फूस से भी बनाते हैं, टीन शेड भी रखते हैं, तो वो जो छप्पर है उसको आप अच्छे से चेक कर लें कि कहीं बारिश का पानी तो उसमें नहीं आएगा। यदि पानी का बारिश आने की जैसी संभावना हो तो छप्पर को सुधार लें और उसकी सफाई वगैरह कर लें, कचरा या कीड़े कांटे या जो भी जहरीला कोई उसमें ना बैठा हो या उसने घर ना बना लिया हो, जिससे आपके आने वाले टाइम पर पशुओं को नुकसान हो सके। दूसरी बात यह है कि पशु का छप्पर ऊपर से तो ठीक है, लेकिन हमारे पशुपालक भाई ये भूल जाते हैं कि जो पशु नीचे जो बैठता है वहाँ पे भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि पानी का भराव एकदम होता है और फिर पशु रात भर बैठ नहीं पाएगा, पशु के घर में पानी भर जाएगा और इस वजह से पशु जब नहीं बैठेगा तो तमाम बीमारियां उस पर असर करेंगी और उसके बच्चे और दूध देने की जो क्षमता है उसकी एकदम कम हो जाएगी। तो पशु का बैठने का स्थान मतलब छप्पर के नीचे का स्थान देख लें, यदि मिट्टी डालनी हो तो मिट्टी डाल दें, उसमें गड्ढे हों तो गड्ढों को भर दें और आसपास कोई कीड़ा कांटा या कोई सफाई जैसा ही बात हो तो उसको जरूर कर लें, क्योंकि गंदगी अगर रहेगी तो कीड़े कांटे पनपते हैं। तो इस तरह से ये सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि हमारे पशु के रहने की जगह साफ सुथरी रहो, आने वाले टाइम पर बरसात में पानी ना आए और उसके रहने की जो बैठने की जगह है जहाँ रात को पशु सोते हैं वहाँ गड्ढे ना हो, पानी ना भरे। दूसरी बात जो बहुत आवश्यक है वो ये है कि इनके पीने और खाने की क्या व्यवस्था रहेगी आने वाले सीजन में, क्योंकि पशु एकदम जाते हैं, घरों में बंद हो जाते हैं, अब क्या किया जाए। तो इसलिए पशुपालकों, ज्यादातर किसान भाइयों ने भूसा का भंडारण कर लिया है और भूसा रख लिया है, कुरुओं में बांधते हैं, कुछ पुरानी पद्धति से बांधते हैं, कुछ ने अपने हिसाब से जो भी है, हमारी गौशाला वालों ने अपने गोदाम भी भर लिए हैं, तो भूसा में पानी ना गिरे। यदि भूसा अगर आपका कच्चा है तो उसमें जरूर देख लें कि पानी ना चला जाए, यदि भूसा में पानी चला गया फंगस लग जाएगी, भूसा का सब खराब हो जाएगा, आपका पशु उसको खा के बीमार हो सकता है। छा भंडारण के जो जगह है उसकी आप देखरेख जरूर कर लें कि कहीं से पानी तो नहीं आएगा, यदि पानी आने की संभावना दिखती हो तो पॉलीथिन जरूर रखें। हर पशुपालक अपने घर में एक तिरपाल करीबन 40x20x40 की जरूर रखे, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग आप कर पाएंगे। इस तरह से ये दो चीजें मैंने बताई आपकी खाने पीने और रहने की। एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी अग्रवाल साहब मेरे से कह रहे थे कि वैक्सीनेशन का टाइम है, बहुत सही बात है। इस समय हमने शिवपुरी जिले में सारे जो हमारी संस्थाएं हैं पशु पालन विभाग की, पशु चिकित्सा संस्थाएं जो हैं, वहाँ भंडारण करा दिया है 3-4 तरह की वैक्सीन का। पहली वैक्सीन जो बहुत आवश्यक होती है बरसा ऋतु से पहले, उसका नाम है गलघोंटू बीमारी की वैक्सीन, HS कहते हैं उसको। दूसरी है VQ, एक टंगिया, पशु एक पांव से लंगड़ा हो जाता है इसलिए उसका नाम एक टंगिया है, इसकी भी वैक्सीन आ चुकी है, भंडारण सब जगह है। तीसरी वैक्सीन बकरियों के लिए आ चुकी है जिसका नाम है PPR, बकरियों की बीमारी अक्सर बरसात में ये होती है, उसके टीके आ चुके हैं। तो एक गलघोंटू, एक टंगिया और PPR मतलब बकरियों वाली BPR वैक्सीन, तो ये तीनों वैक्सीन हमारे यहाँ सब जगह उपलब्ध हैं, निशुल्क लगाई जा रही हैं। आप लोग अपने अपने जगह जहाँ आपका गांव है वहाँ से जा करके अपने उसका नाम लिखवाया है, अपना मोबाइल ले आएँ और वहाँ से तारीख ले लें, लेकिन ये 20 जून के पहले कर लें, क्योंकि 20 जून के बाद संभावना ये रहती है कि बारिश तेज आ जाती है, आना जाना आपको भी परेशानी होगी और हमारे जो जाएंगे जो टेक्नीशियन उनको भी परेशानी होगी। तो आप लोग HS गलघोंटू का टीका जरूर लगवाएं। अब ये थोड़ा सा बताऊंगा कि गलघोंटू होता क्या है। देखिए होता क्या है, ये एक बीमारी होती है और बरसात के जैसे ही पहली बरसात होती है और जमीन पर घास आती है और थोड़े थोड़े से डबरों में पानी आ जाता है, उस समय जैसे ही पशु उसको पीता है या उस नई घास को खाता है तो उसके कीटाणु उस घास से उसके पेट में पहुंच जाते हैं और वो जा करके फिर बीमारी फैलाते हैं एक पशु में, और एक पशु से ये बीमारी दूसरे पशु में, और ऐसे होते होते पूरे क्षेत्र में बीमारी फैल जाती है। रात को पशु लौट के आता है और आते ही उसको बुखार आना शुरू हो जाता है, रात को उसकी सांस लेने में परेशानी होने लगती है और सुबह आते आते गंभीर अवस्था में आ जाता है और उसकी श्वास नली बंद हो जाती है, और अगर उस दिन भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पशु मर जाता है। बड़ी खराब बीमारी है, इसको नाम है गलघोंटू, गला घोंट देती है। तो इसका नाम मैंने बताया कि HS वैक्सीनेशन इसकी आ चुकी है, बहुत अच्छी वैक्सीन है, आप लगवा लीजिए। 3 साल से बच्चे से लेकर के जितनी भी उम्र
जानवर होगी उसको आप लगवा लीजिए, क्योंकि कई पशुपालकों के दिमाग में ये रहता है कि कहीं हमारी प्रेग्नेंट या हमारी गाय ग्यावन है या हमारी बफेलो भैंस ग्यावन है और कहीं इसको वैक्सीन को लगाने से उसका बच्चा तो नहीं फेंक देगी। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्री से वैक्सीन लगवाइए, अभी ये वैक्सीन लग जाएगी, फिर आप बेफिक्र होकर सोइए और आपके पशु

0: स्वस्थ रहेंगे, गलगोंटू की। और दूसरी बीमारी है एकटंगिया, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, ये हमेशा छोटे पशुओं पर बीमारी अटैक करती है। जो 3 साल से लेके 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, नए पड़ा पड़िया या बछिया या बछड़ा, तो उनके जो नए खून में ये कीटाणु चला जाता है, वही रास्ते से, जैसे बताया कि घास खाने से नई घास या नया पानी में ये आ जाते हैं और ये जाकर के शरीर में फैल करके बीमारी फैलाते हैं। और उसमें सुबह ही सुबह जब पशु उठता है तो उसका एक पांव लंगड़ाता है। किसान भाई अक्सर ये सोचते हैं कि किसी वजह से लंगड़ा रहा होगा, तो कुछ करते हैं अपने हिसाब से उपचार वगैरह, लेकिन वो बीमारी होती है, उसमें पांव एक का जांग सूज जाती है, एक पांव सूजता है, और उसमें जैसे आप दबा के देखोगे तो उसमें से आवाज़ भी आती है, चर चर जैसी आवाज़ आती है, उसमें गैस भर जाती है और वो उसको एक टंगिया बीमारी उसको हो चुकी होती है। फिर इसके बाद में उसका इलाज आप उपचार कराओगे तो बहुत महंगा होता है और परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए आप दूसरी वैक्सीन जिसका नाम मैंने बताया एक टंगिया मतलब VQ, उसको आप जरूर लगवा लें, समय पर उपलब्ध है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
1: आपने वैक्सीन का भी बहुत अच्छा बताया कि इन वैक्सीन को अगर हम लगवा लेंगे तो हमारा जानवर सुरक्षित रहेगा आगामी दिनों में। खानपान की अगर बदलाव करें कि जैसे बताया कि कोई जो आपने जिस घास का जिक्र किया था जिसके कारण बीमारी पनप रही है, तो अब पशु पालक को अपने घर पर भोजन कराना है तो उसकी कुछ डाइट प्लान में बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि बारिश आ गई।
0: हाँ, बहुत सही बात है। देखिए, जो दुधारू पशु रहते हैं बरसात के सीजन में, और उनको दुधारू पशुओं के लिए हमेशा आवश्यकता रहती है कि उनको दाना और उनका हरा चारा और उनकी सानी जो बनाते हैं भूसा की मात्रा में एक मात्रा में मिला करके देते हैं। जैसे कि एक मोटा मोटा हिसाब बताता हूँ मैं कि यदि कोई दुधारू पशु है और यदि वो 4 किलो दूध देता है एक टाइम का, तो वो दोनों टाइम का अगर अपन मिलाएंगे तो 8 किलो हो जाएगा। तो 8 किलो दूध देने की क्षमता अगर उसके शरीर में है तो उसको पूर्ण करने के लिए हमको आधा उसको कम से कम 4 किलो दाना देना पड़ेगा, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को। अब दाना मतलब क्या, दाने में 3-4 चीज़ें होती हैं, या तो पीना ले लेते हैं या सुदाना ले लेती हैं या चुनी ले लेते हैं, जो भी है, मतलब घास के अतिरिक्त तो उसकी सानी में 2 किलो दाना होना आवश्यक है। तो ये वर्षा ऋतु में आप पहले से ही भंडारण कर लें कि दाना हमारे पास कौन सा है, यदि सुदाना है तो वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बरसात में सुदाना एकदम नहीं मिल पाता है, बाजार भी बंद रहते हैं, प्रॉब्लम हो। चुनी अगर आपके पास है तो उसको भी सुरक्षित रखें। और हरा चारा जो है बरसात में आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बरसात के समय में हरा चारे की इन्फेक्टेड रहता है और जनरली मिल भी नहीं पाता है।
1: जिस तरह से मनुष्य के लिए बताया जाता है कि डाइट बदल बदल के रहनी चाहिए, मतलब एक दिन दाल अरहर की हो, एक दिन मूंग की हो, एक दिन सब्जी हो, तो जानवर के लिए भी है कि एक दिन सुदाना हो, एक दिन पीना हो, एक दिन अगर चना हो, एक दिन खली हो, क्या ये हो सकता है?
0: ऐसा पशुओं के साथ नहीं रहता है, क्योंकि पशु के शरीर की जो आवश्यक मात्रा है वो उसको रोजाना की डाइट में मिल जाती है, और उसके टेस्ट के मामले में जैसे अपन लोग चेंज करके खाते हैं, इस तरह की इच्छा जानवर को नहीं, उसके शरीर की पूर्ति ये 2-3 चीजों से हो जाती है, वो लगातार दे सकते हो, उसमें ऐसा उसको नहीं है कि अगर उसको लगातार दिया तो उसकी कोई उसकी रुचि हो जाएगी, ऐसी समस्या देखने में नहीं आई है।
1: मनुष्य की माफिक बदलाव जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, डाइट प्रॉपर होनी चाहिए।
0: डाइट प्रॉपर होना चाहिए, उसकी प्रोटीन कितना देना है, उसको कितना दूध के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट देना, ये सब देना चाहिए।
1: बीमारियों में एक मुंहपका और खुरपका,
0: हाँ,
1: बारिश के दौरान होते हैं,
0: ये बारिश के बाद होते हैं, जैसे ही बारिश जाएगी चटका पड़ेगा, जब कुंवार का महीना आएगा और उस समय तेज जो धूप पड़ेगी उस समय ये रोग शुरू होता है।
1: बारिश में
0: ये मुख्य रूप से 2 बीमारी होती है
1: जिनका आपने जिक्र
0: मैंने जिक्र किया, गलगोंटू और एक टंगिया, इसी का हमको सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना चाहिए।
1: अगर बारिश में किसी का जानवर गाय या भैंस बच्चा देती है,
0: हाँ,
1: 51 मतलब हाँ, डिलीवरी होती हाँ, है, तो उसके संग क्या सावधानी हाँ, नहीं की जाएगी?
0: बहुत अच्छी बात ने आप लोगों के लिए पूछी है। तो देखिए, होता ये है कि जनरली हमारी भैंसें वर्षा ऋतु में ब्याना शुरू कर देती हैं, और वर्षा ऋतु में जब भैंस ब्याने को होती है तो किसान भाई बहुत परेशान हो जाता है। यदि उसकी भैंस ठीक से ब्या नहीं पाई तो वो उसको वर्षा ऋतु में सबसे पहले तो चिकित्सक को ढूंढने में दिक्कत आती है, अप्रोच करने में, बाजार जाने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले 2-3 चीज़ों के हमारे पशुपालक ध्यान रखेंगे। जो गाय भैंस 15 दिन पहले से ये पता लग जाता है कि ये ब्याने वाली है, और ब्याने से पहले 15 दिन के बाद में भी जैसे ही 10 दिन बचते हैं तो उसके शरीर में लक्षण चेंज होने लगते हैं। जैसे मैं कुछ लक्षण बताना चाहूँगा, यदि पशु 3-4 दिन बाद ब्याने वाला हो तो उसका पीछे का हिस्सा भारीपन देखने लग जाता है, उसका जो ब्याने की स्थिति में जो उसका योनि मार्ग होता है वो काफ़ी सूजन जैसी स्थिति में आ जाता है, और दूध थन उसके दूधों में भरना शुरू हो जाता है। ये कब होता है? 10 दिन पहले से। और धीरे धीरे जैसी ये स्थिति आगे आगे बढ़ती जाती है, और जैसे ही 3 दिन बचते हैं ब्याने के, 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 72 घंटे के नियर अबाउट, तो पशु के जो पीछे की जो 2 हड्डियाँ होती हैं जो पूंछ के आसपास रहती हैं, वो उनकी गैप उनमें गैप बन जाता है, उनमें जगह दिखने लगती है, और इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये अब पशु ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन में ब्या जाएगा।

0: तीसरी बात जो आएगी वो ये आएगी कि उसके योनि मार्ग से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है, ये 72 घंटे। और जैसे ही एक दिन बचता है तो पशु फिर अनइजीनेस में, उसको अच्छा नहीं लगता है, बैठता है, उठता है, इधर उधर देखता है और अपने पैरों को जमीन पर भी रगड़ता है कई बार, क्योंकि वो तैयारी करता है ब्याने की। ये सब चीज़ें अगर आपको दिखने लग गई तो ये पता पक्का हो गया कि ये पशु ब्याने वाला है। अब उस स्थिति में आपके पास बहुत सारे मोबाइल नंबर रहते हैं, आप जरूर बता दें कि ऐसा ऐसा होना शुरू हो गया है और आप मौके पर अगर जरूरत पड़ेगी तो रहें, और उस समय उसको जरूर बुला लें जब वो ब्याने वाली तैयारी हो या ब्याने की शुरुआत हो चुकी हो। चलो ये मैंने मान लिया कि किसी वजह से कोई ना बताए और ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि पशु ब्याना शुरू हो गया, अब आप वर्षा ऋतु में क्या करेंगे? तो सबसे पहले उसको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर सूखा हो, पानी बिल्कुल नहीं हो, और आपके जहाँ पर उसको ले जा रहे हैं वहाँ पर कुछ बोरियाँ पुरानी जिसमें कोई गीलापन ना हो, सूखी हो, पुराने कुछ कपड़े अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा, ये सब रख लें। और उसमें उसको जैसे ही बच्चा आता है तो उसको कपड़े के आसपास से पूंछ उसको रख के पूंछ के उसको और उसके पशु के आगे चाटने के लिए दे दें। तो पशु और उसका बच्चा जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ वहीं से आना बंद हो जाती हैं, पशु उसको चाट चाट के अपने हिसाब से प्राकृतिक रूप से ठीक कर लेते हैं, और इस तरह से एक बात। दूसरी बात, इस सब होने के बाद में फिर से पशु चिकित्सक को बताना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी सावधानियां होती हैं। जैसे पहली ये होगी कि बच्चे का जो नेवल होता है, अक्सर हमारे किसान लोग बताते हैं कि साहब उसके नला सूज गया, उसमें से जो है पस आने लगी, तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि उस समय जो बच्चा पैदा होता है उसका नाल को वो डोरे से नहीं बांधते हैं, या बांधते भी हैं तो गंदे डोरे से बांधते, तो उसको नाल को एक साफ धागे से अगर गंदा है तो धो लें साबुन से और उसको बांध लें, उसके 3-4 गांठ लगा दें और इसके बाद वो नीचे कैसा सूख के अपने आप गिर जाए। और टिंचर आयोडीन एक दवा आती है वो जरूर लगाते रहें 2-3 दिन तक, 4-5 दिन। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप लोगों को अक्सर मच्छर मक्खियां परेशान करेंगे, जैसे ही आपके पशु आएंगे काटेंगे, लात मारेगी, पशु भागेंगे और दूध देने में भी परेशानी करेंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छा सुझाव मैं बता रहा हूँ कि आप अपने घर पर एक नीम का तेल आता है, आधा किलो आप रखें और उसमें 100 ग्राम कपूर पीस करके डाल दें, ये दोनों चीजें मिक्स करके एक बोतल में भर के रख लें, और शाम को जब पशु आपका चरने आता है या वर्षा ऋतु चल रही है घर में ही बंधा है तो उसको शाम को जरूर लगा दें उसकी पूरे शरीर। दूसरी बात ये है कि अक्सर किसान भाई जी कहते हैं कि साहब की लीली और ये मच्छर मक्खियों की मारने की आप दवा दे दीजिए और हमारे यहाँ के जो संस्थाएं वहां से ले आते हैं। देखिए इस जो दवा दी जाती है की लीली मारने की, इसमें जहर होता है और कई बार पशु चाट लेते हैं और कई बार हम भूल जाते हैं और किसी जगह से हमारे बच्चे भी संपर्क में आते हैं, मेरे को ऐसे केस बहुत देखने को भी आ रहे हैं। तो उसका आप ध्यान रखें कि वो जो अभी जो दवा उसको ना लगाएं, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, आने वाला सीजन बरसात का भी है और ऐसे में कोई प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत, ठंडों में ये चीज चल जाएगी, लेकिन अभी उसको जो लगाने वाली जो दवा है किलीली मड़ूलाओं को मारने वाली उसको अभी ना लगाएं, क्योंकि अभी लगाने से दिक्कत खड़ी हो जाएगी, गर्मी ज्यादा है। तो क्या करना है जो मैंने बताया, नीम का तेल उसमें कपूर डाल करके आप रोज लगाओगे, मक्खी भी नहीं बैठेंगी और किलीली मड़ूला भी नहीं लगेंगे, तो उसका उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा है।
1: तो डॉक्टर भगवती प्रसाद यादव जी, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी और वर्तमान में उप संचालक पशुपालन विभाग का आप काम देख रहे हैं, आपसे बरसात पूर्व एवं आरंभिक बारिश में पशुधन की देखभाल विषय पर एक अच्छी बात हुई। हम उम्मीद करते हैं हमारे पशुपालक भाई किसान जो पशुपालन करते हैं वो अवश्य इसे सुनकर कुछ जागरूक होंगे और अपने पशुओं का इस तरह से रखरखाव करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्ते।
2: तो हमारे भैया सुन रहे थे जो भेंट वार्ता, चीको विषय है तो बरसात पूर्व एवं आरंभिक बारिश में पशुधन की उचित देखभाल। ही में वार्ताकार हते डॉक्टर भगवती प्रसाद यादव और इनसे बता रहे थे अपे भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया हम आशा करे थे कि ई भेंट वार्ता को हमारे किसान भैया ने बहुत ध्यान से सुनो होगो और हमारे किसान भैया बरसात के ई मौसम में ई भेंट वार्ता में दी गई एक एक जानकारी को लाभ जरूर लेंगे। भैया अब हम आपको सुनवा भी जा रहे हैं एक लोकगीत और जाएगा रहे हैं राम से।

मैं भैया सुन रहे हते जो लोकगीत और जाए गा रहे हते राम सिंह राय। भैया अब कार्यक्रम के अंत में आज के मौसम को हाल भी जान लेते हैं। भैया आज को अधिकतम तापमान रहो 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहो 26 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता यानी कि नमी रही 44%, और हवा की गति रही भैया 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया ई तो बात भई आज के मौसम की। भैया कल हम अपे चौपाल कार्यक्रम में बात करे हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ई के साथ साथ भैया हम चर्चा करे हैं डेंगू मलेरिया से बचाव हेतु सावधानियां। तो भैया ई तो बात भई कल के चौपाल कार्यक्रम विवरण की। भैया अब अपे कार्यक्रम को समय समाप्त हो गयो है, तो अपे निधि बहन को देव आज्ञा। राम राम, जय जवान जय किसान।

0: भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: भारत को कल 3 नए नौसैनिक जहाज मिले। इनमें स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी, सर्वे वेसल संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अग्रय शामिल हैं। इन जहाजों को कल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को समर्पित किया। इन जहाजों और भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक कॉमोडोर केडी जोशी। कॉमोडोर जोशी, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: कॉमोडोर जोशी, अलग अलग जहाजों की विशेषताओं पर बात करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इन जहाजों का भारतीय नौसेना में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। इनके निर्माण में भारतीय उद्योग जगत के साथ साथ 200 से अधिक MSME की भी व्यापक भागीदारी रही है, तो आपके विचार में ये कितना महत्वपूर्ण है?
2: देखिए, ऐसा है कि आज के वातावरण में जो दुनिया में चल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि भारत को अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। उस दिशा में जो सरकार ने काम किए हैं इस बारे में और जो अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी ऊपर जा रही है उसके कारण, चाहे वो शिप बिल्डिंग में हो, चाहे शिप निर्माण में जो अलग अलग इक्विपमेंट काम में आते हैं, बनाए जाते हैं, वो आजकल भारत में बन रहे हैं। इसका उदाहरण ये 3 जहाज हैं जिनमें करीब 75-80% इक्विपमेंट जो है वो भारत में बना हुआ। जैसा कि आपने बताया, करीब करीब 200 MSME लघु उद्योग इसमें इन तीनों जहाजों में इनके साथ जुड़े हुए थे, ताकि उन्होंने जो इक्विपमेंट बनाए, उन्होंने जो सिस्टम्स बनाए, उन्होंने जो आइटम्स बनाए, वो इन जहाजों में लगे हुए हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि भारत के लिए ये बहुत स्वर्णिम मौका है कि पूरे इस दिशा में अच्छी प्रगति करें, और जितना ये गैप रह गया है पूरी तरह इंडिजिनस होने में, जो आप कह सकते हैं कि जो वेपन्स और सेंसर्स हैं उसमें ये थोड़ा गैप ज़्यादा दिखता है, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं शिप बिल्डिंग के, जिसमें शिप की जो बॉडी है जिसको हल बोलते हैं वो, और शिप के मशीनरी जो अंदर लगी हुई हैं, वो प्राइमरीली हमारे पास अच्छी कैपेबिलिटी है उनका भारत में ही निर्माण करने की और भारत में ही उसको अपने जहाजों पे लगाने की। अगर आप देखिए, भारत में जहाज निर्माण का जो कार्य है वो अभी यहीं पे हो रहा है। कुछ दशक पहले हम लोग जहाज बाहर से मंगवाते थे, आज जहाज घर में बन रहे हैं। और जिसके कारण, अगर आप दोबारा से इसी 3 जहाजों का उदाहरण लेंगे, तो 200 MSME जैसा आपने बताया, करीब करीब 4,000-4,500 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, 10,000 के करीब लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जिनमें कह सकते हैं कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिली है।
1: जी कॉमोडोर जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि किसी देश की समुद्री शक्ति जितनी मजबूत होती है उसका आर्थिक और सामरिक प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के ही शब्द।
3: मैरिटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा।
1: कॉमोडोर जोशी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी और अब आपसे ये बात करना चाहूंगी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारतीय नौसेना ने इसे एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत बताया है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि स्टेल्थ फ्रिगेट आखिर होता क्या है?
2: अभी आप देखें, इसके लिए जो स्टेल्थ शब्द है उसका मतलब जानना थोड़ा सा जरूरी है। स्टेल्थ का मतलब है छुपा हुआ, आंखों को एकदम ना दिखे, उस हिसाब से बोला जा सकता है। तो अगर आप देखिए, पुराने जो पहले जो जहाज बनते थे, आप उनको अपने से दूरबीनों से या अपनी आंखों से थोड़े डिस्टेंस तक देख सकते थे। बट आजकल जो जहाज बन रहे हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो आज की डेट में करीब 10 से 50 से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक किसी भी जहाज को उसकी जो प्रेजेंस है कि जहाज मौजूद है

0: कि नहीं 300 किलोमीटर दूर, उसको देखने की क्षमता रखते हैं। बट अगर जहाज की कंस्ट्रक्शन ऐसी हो, उसका निर्माण ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो रडार है जिसको हम बोलते हैं, जिससे एक जहाज दूसरे जहाज को देख सकेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, दूसरे जहाज की अगर कंस्ट्रक्शन एक अलग तरह से हो, तो ये रडार जो है वो देख नहीं पाता है उसको। तो रडार जो एक इक्विपमेंट है, वो एक बीम फेंकता है, वो बीम वापिस आती है दूसरे जो टारगेट जहाज है उससे। लेकिन जो स्टेल्थ शिप है, वो टारगेट, वो जो बीम उसके ऊपर जाएगी, उस बीम को कहीं और डायरेक्ट कर देगा, ताकि वो जिसने बीम आपके पास भेजी है उस जहाज को वापस ना मिले, उस जहाज को आपकी प्रेजेंस का, आपके वहां मौजूद होने का पता नहीं लगेगा। इस जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और उसमें सिर्फ जहाज निर्माण नहीं, उसका जो पेंट लगाया जाता है उसका भी योगदान रहता है।
1: आपने काफी विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाया कि आखिर स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है। आगे बढ़ते हैं कॉमोडोर जोशी, और कल यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस के साथ साथ विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, और इस ही दिन सर्वे वेसल लार्ज INS संशोधक को भी नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज की भूमिका क्या रहेगी और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
0: इंडियन नेवी में जो सर्वे वेसल्स हैं, उनका काम जैसे कि वो नाम दर्शा रहा है, सर्वे करना है। मतलब उसको नीचे, जो समुद्र के नीचे है, उसको देखना है कि क्या चीजें मौजूद हैं, कुछ डेबरी है क्या, कुछ शिप्स का रेक है क्या, उसमें समुद्र का जो बॉटम है उसमें इवन नहीं होता है। जैसे सड़क ऊंच नीच होती है, वैसे समुद्र का जो नीचे का हिस्सा रहता है, जो पानी के नीचे, वो भी ऊंचा और नीचा रहता है। तो अगर कोई जहाज किसी ऐसी जगह से जा रहा है जहाँ उसको सफिशियंट डेप्थ नहीं है, जहाँ गहराई नहीं मिल रही है, तो जहाज के ग्राउंडिंग होने का खतरा रहता है। तो अब जहाज को कैसे पता चलेगा कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना है? तो वो चार्ट में उनकी डेप्थ वगैरह लिखी जाती है, और वो डेप्थ कौन लिखता है, शिपरेक इंडिकेट कौन करता है, डेबरी है करके इंडिकेट कौन करता है, वो सर्वे वेसल्स जो हैं वो सर्वे करते हैं, और वो फाइनली इंफॉर्मेशन चार्ट्स पे दर्शा दी जाती है। और अगर कोई शिपरेक वगैरह है तो मरीनर्स को सबको बता भी दिया जाता है बुलेटिन्स के द्वारा कि इस एरिया में फला फला जगह पे एक शिपरेक है, आप इस जगह से ट्रांजिट मत कीजिए। तो इन जहाजों का जो काम है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, बट अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। संशोधक जो है, हमारे पास अभी करीब करीब चार सर्वे वेसल्स हैं, उसमें से संशोधक जो है वो लेटेस्ट परसों कमीशन हुआ है, और इसमें अंडर वाटर सोनार साइट स्कैन लगा हुआ है। जो साइट स्कैन सोनार है उससे जहाज की कैपेबिलिटी दाएं बाएं देखने की, नीचे देखने की, किसी एक टाइम पे ज्यादा अच्छे से बढ़ती है, और जो फिर वो एक पिक्चर बनती है उसके सामने कि एक समुद्र के जो नीचे सतह है वो कैसे दिख रही है, वो ज्यादा अच्छे से आती है सामने। तो इनकी जो सर्वे कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग इनकी ज्यादा बेहतर है, ये वाले जहाज ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, और उसके कारण पूरा मैरिटाइम सेक्टर, विच डजंट ओनली इंक्लूड भारतीय नौसेना के जहाज, अपितु बाकी जो कमर्शियल ट्रेडिंग है उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, जो ये काम करते हैं अपने सर्वे वेसल्स।
1: आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बात करना चाहूंगी INS अग्रय की। ये अर्नाला श्रेणी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वॉटर क्राफ्ट है। इसकी खास विशेषताएं क्या हैं और ये भारतीय नौसेना की क्षमताओं को किस प्रकार मजबूत कर रहा है?
0: जी, जैसा कि नाम में आ रहा है, शैलो वाटरक्राफ्ट, शैलो का मतलब है कि ज्यादा गहराई भी नहीं। उसका काम है कि वो जो कम गहराई वाले एरिया है उसमें ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कर सकता है। एंटी सबमरीन का मतलब है कि जो समुन्द्र के नीचे से जहाज को अटैक होने के चांसेस हैं वो उनका पता लगा सकता है। तो काफी सारे जहाज हैं जो थोड़े डीप वाटर्स में जाके वो अपने ASW ऑपरेशन, दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये वाला जो जहाज है ये शैलो वाटर में भी कर सकता है। आजकल की डेट में एसिमेट्रिक वॉरफेयर काफी बढ़ गया है, हमको पता नहीं चलता है कि किस जगह से हमको एक वल्नरेबिलिटी है या थ्रेट आ सकता है, तो कई बार शैलो वाटर से भी थ्रेट होता है। तो ये जो जहाज है ये वहां पे पता कर सकता है कि वहां से कोई थ्रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके पास में इसके लिए एडवांस सोनार सिस्टम्स लगे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा थ्रेट है जो कंफर्म भी हो जाता है

0: टॉर्पिडोज लगे हुए हैं जिससे इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इन जहाजों के द्वारा।
1: कमांडर जोशी, आपसे सबसे पहले मैं एक चीज समझना चाहूंगी यहाँ पे कि महासागर यानी कि ओशन और डीप सीज में क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, और ऐसे में जितना हम अपने मैरिटाइम

0: से करीब 200 माइल्स तक समुंदर के अंदर, वो ईईजेड बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके अंदर जो अगर नीचे कुछ मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे तो वो देश के समझे जाते हैं, उसके बियॉन्ड जो है वो इंटरनेशनल एरिया माना जाता है। तो अगर हमारा जो माइनिंग कैपेबिलिटी है वो अगर सशक्त बनाई जाए, डीप अंडर वाटर माइनिंग कैपेबिलिटी, तो समुन्दर की सतह के नीचे ये अंदाजा है कि बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन के लिए, चाहे अपने डे टू डे इवन मेडिकल अगर आप देखे जाएं, या फिर किसी और भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में काफी सारे मिनरल्स हैं जो देश में अपनी जमीन पे नहीं है लेकिन हो सकता है वो सागर के अंदर मौजूद हो और जो हमें जरूरत है। तो हमारा सबसे पहले बनता है कि वो ये जो एरिया है हमारा वो थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रहे, उसमें ज्यादा अपने को वल्नरेबिलिटीज ना रहे, अपने को उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस ना रहे बाकी लोगों से, क्योंकि ये जो है ऑल्दो ईईजेड बोल सकते हैं बट नेविगेशन फ्रीडम सभी कंट्रीज को, सभी जहाजों को वहां से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाज रुक जाएंगे, आना जाना रोक दिया जाएगा, तो जहाज आते जाते रहेंगे दूसरी कंट्रीज के। लेकिन हमारा इतना ये होना चाहिए कि हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं नीचे तो वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, वो कोई और उस पे हक नहीं जमा पाएगा। तो ये अपना एरिया बनता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम बनाया गया है, चाहे वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाया हो, चाहे वो शिपिंग सेक्टर को 70,000 करोड़ रुपए दे के बनाया गया हो, ये सारा का सारा इसको इसका जो एक अफेक्ट बोलते हैं, विच इज एक डोमिनो अफेक्ट बनेगा इसका, उसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो सरकार का इस टाइम जो एक फोकस एरिया लग रहा है, एक ऐसा एक अंदाजा है कि भारत को एक समुद्री शक्ति बनाया जाए।
1: जी कॉमोडोर जोशी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें इस पूरे विषय के बारे में हमें समझाया। आपने हमें ये भी बताया कि क्या महत्व है उन तीनों शिप्स का जो कल कमीशन हुई है प्रधानमंत्री द्वारा। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय आकाशवाणी को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम ग्रंथ फिल्म का गीत विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जयदेव के संगीत से सजा हुआ गीत बोल हैं जानिसाद अख्तर के और फिल्म का नाम प्रेम पर्वत, आवाज लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत इंदिवर का लिखा हुआ। धुन बनाई है बप्पी लहरी ने, आवाजें हैं बप्पी लहरी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम प्रेम प्रतिज्ञा।

हीरा पन्ना, आइए सुनते इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के पोल हैं और संगीत आर डी बर्मन का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के

0: ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जाँच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बाघुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन

0: को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: IN और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Meanwhile, senior politician Andy Burnham has officially launched his campaign to succeed Keir Starmer as the leader of the Labour Party. The race to determine the next occupant of Downing Street is set to begin next month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met his Mongolian counterpart Batsetseg Batmung in Ulaanbaatar. In a social media post, Dr. Jayashankar said the talks underscored the warmth, depth and potential of the India-Mongolia strategic partnership. The two leaders reviewed progress in key areas of bilateral cooperation, including development projects, capacity building, culture, education and security. Benchmark domestic equity indices ended nearly 0.4% up today, buoyed by growing optimism over progress in US-Iran talks in Switzerland aimed at ending the months-long conflict in West Asia. We have a report.
1: The Sensex rose to 91 points to close at 77,094, while Nifty jumped 90 points to settle at 24,103. In the forex market today, the rupee depreciated by 35 paise to close at 94 rupees 68 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.2% up at 1,49,360 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% higher at 2,39,260 rupees per kilogram a short while ago. With Intakhab's report, Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
0: On to sports. In shooting, India added four more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Suhul in Germany, to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. In the FIFA World Cup 2026, Argentina will take on Austria in Group J fixture tonight at Arlington in US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier this morning, Egypt beat New Zealand 3-1 in Vancouver to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Center in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिले भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिले भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा मेंबरान ने पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की قیادت वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफुजाती निजाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में जारी टूट-फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने प्रीतम केंद्रे के हासिल करदा सोने के एक तमगे समेत चार मजीद तमगे जीत कर फहरिस्त में आला मकाम हासिल कर लिया है और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लगने के एक अलमनाक हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर की उम्र 16 से 25 वर्ष के दरमियान थी और ये तालिब इल्म थे। यह हादसा आज से पहर उस वक्त पेश आया जब अलीगंज में पुरानिया इलाके की एक दुकान के ऊपर वाकई एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके सबब तलबा में बेचैनी पैदा हो गई। 6 तालिब इल्मों को KGMC

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इसे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331 04 81 या 2371

0: सात एक एक सात या दो तीन सात एक शून्य छः और दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: हाँ, सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज है लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी नमस्कार,
0: नमस्कार, सवाल पूछें अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
1: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
0: तो 6 महीने के बाद और फिर
1: 6 महीने दो बार दिया जाता है।
0: आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे, तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है। और इसलिए

0: इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी, अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
0: कंपनी के लिए दो तीन चीजें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज जरूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपए तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रुपए का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा, अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा
1: डीबीटी के थ्रू ही।
0: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
1: जी, हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। सर, मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती, क्या
1: पात्रता क्या होनी चाहिए?
3: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
1: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज हैं या 50 से ज्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आप आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
0: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ईसीआर पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए।
1: हाँ,
0: वो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कंपोनेंट है हमारा कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट, एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं, तो बेसलाइन से कितना

0: तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है, यहाँ इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात हो रही है।
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
0: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी ने दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है।
3: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है, तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
1: सैलरी का पूछा
3: उन्होंने। सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए, तो 1 लाख से जो नीचे उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
3: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये पीएमवीबीआरवाई के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये 3 स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कंपोनेंट है लाइफ इंश्योरेंस का।
1: पुणेंद्र जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
0: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेस लाइन से या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉई तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी अब बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं हटा रहे हैं अगर वहाँ पर रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो राधर एम्प्लॉयर को अभी ज़्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
1: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
0: विन विन है जी।
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
4: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
4: मैं बसपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर नए स्तर से। दूसरा है सर,
0: जी पूछे
1: जी मोहन जी,
4: जो सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
1: जनरलाइज सवाल पूछाना नहीं उन्हें।
0: एक जनरलाइज सवाल है, बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई है भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो

0: वैसे जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
1: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टेब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है, बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसे बहुत सारे ऐसे एमएसएमई हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल दो एम्प्लॉयज एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है, तो दो साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट दो नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है, तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
0: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
1: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें, सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो दो साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको चार साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
0: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
2: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहाँ पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है, तो ये दोनों चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
0: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
3: छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
0: सवाल पूछे,
3: भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है?
0: कौन कौन से
2: इसमें
0: सेक्टर?
2: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है, तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ ये सारी बेनिफिट जाती है।
0: जी, अगर किसी के मन में प्रश्न है कि कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
1: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा pmvbrv.labor.gov.in, इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80, इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
0: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
2: मैम, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
0: जी।
2: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
0: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी ये जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणित जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। फैज अनवर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं औरंगाबाद से राजेश सावले, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये पैरा सा गीत।

भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत। और जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड बानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, ये सभी श्रोता सुनने की ख्वाहिशमंद है हिना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं नीरज का लिखा हुआ गीत, तर्ज बनाई है एसडी बर्मन ने, फिल्म का नाम है गैम्बलर। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं रिंगने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर।

मैंने प्यार किया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और SB बाल सुब्रमण्यम की आवाज़ में। देव कोहली का गीत है और संगीत राम लक्ष्मण का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कहानकर, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रमिता और आकार हाइस बहादुरपुर नागपुर से वैशाली शैलेश, श्वेता सुमित और कुमारी धोनी। एक और पत्र हमारे हाथ में है छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा का। तो ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत, तो सुनते हैं इस गीत को।

नेपाल पैलेस सागर से हमें पत्र लिखा है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। और एक और पत्र हमारे हाथ में है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिमा, शिवानी शिमाली। और ग्राम पजौनिया जिला जालौन से हमें पत्र मिला है सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं जानी दुश्मन फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। वर्मा मलिक का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन राग है यमन। विलंबित ख्याल एक ताल में और मध्य लय में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग था यमन। तबले पर संगत की थी ठाकुर उदय प्रताप सिंह ने और हारमोनियम पर थे सलीम अल्लाह वाले। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा

0: कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ।

कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में अंधेर नहीं होता। देरी भले ही हो जाए लेकिन वो देता जरूर है, और जब देने पे आता है तो बस छप्पर फाड़ कर देता है।